0: दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है।
1: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को 4 साल हो गए हैं। हमने इस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है और मैंने 2032 तक इसे दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत पर भरोसा है। उन्होंने पहले ही 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 7वें सबसे बड़े स्रोत हैं। आने वाले वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात से निवेश को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। $100 billion in the years to come।
0: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक एक्स हैंडल ADGPI पर पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी दी गई है। ADGPI ने पोस्ट करते हुए लिखा, इंडिया US फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को लगाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने आज महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इससे शूटिंग में देश के मेडलों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education or CBSE to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. A bench comprising Chief Justice Suryakant, Justices Joymalia Bakshi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and additional Solicitor General Aishwarya Bhatti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17th, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages, for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE's statement, the current batches studying in Classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to Class 10th. Indian Navy will host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation, operational and area commanders. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy, amidst the ongoing conflicts in West Asia. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the Air Pollution Mitigation Action Plan in the national capital.

0: Meeting held yesterday reviewed the measures already undertaken, progress achieved on the ground, and additional interventions required before and during the winter session. Under the action plan, no PUCC, no fuel will be implemented at all automatic number plate recognition enabled fuel stations through awareness and enforcement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The government has said that the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. The US will not charge any tariff on certain specialty drugs and associated ingredients used for treatment of rare medical conditions imported from India and 19 other countries. The US Commerce Department published the list of countries in the Federal Register as it prepares to impose a 100% tariff on certain patented pharmaceutical imports and their associated ingredients from September 29th. Eligible products for the 0% tariff rate include all drugs designated for rare diseases, infertility treatments, cell therapies, gene therapies, antibody drug conjugates, and animal pharmaceuticals. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of northeast India, Andaman and Nicobar Islands, south interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to IMD, thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over Madhya Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, Mahi, Konkan, Goa and Odisha today. Meanwhile, IMD has said that the line of withdrawal of southwest monsoon continues to pass through Gurdaspur, Chandigarh, Muzaffarnagar, Aligarh, Dholpur, Udaipur, Disa and Nalia. Indian men's cricket team advanced to the semi-finals without taking the field. Their quarter-final against Afghanistan was abandoned due to inclement weather in Aichi, Nagoya. Meanwhile, India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से एक सप्ताह के अमरीका दौरे पर। अमरीका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया। भारत ने श्रीलंका की जन स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत मदद के लिए लगभग 3 टन टीबी रोधी दवाएं भेजी। म्यांमार सेना के विद्रोही गुट के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हवाई हमले में 33 लोगों की मौत और 36 घायल। स्पेसएक्स के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान स्टारशिप का पृथ्वी की कक्षा में सफल प्रक्षेपण। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है।
1: The comprehensive economic partnership
2: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को 4 साल हो गए हैं। हमने इस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है और मैंने 2032 तक इसे दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत पर भरोसा है। उन्होंने पहले ही 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 7वें सबसे बड़े स्रोत हैं। आने वाले वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात से निवेश को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। $100 billion
1: इन द ईयर्स टू कम।
0: भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका में पेटेंट वाली दवाओं, जैविक दवाओं और उनसे संबंधित घटकों के आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश में दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। 0% शुल्क के दायरे में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित दवाएं, बांझपन के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग और पशु चिकित्सा संबंधी दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के घटकों पर भी 0% शुल्क लागू रहेगा। भारत के अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिंकटनस्टाइन, ताइवान, थाईलैंड, ब्रिटेन और वियतनाम भी 0% शुल्क वाली श्रेणी में हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने श्रीलंका की जन स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत मदद के लिए लगभग 3 टन टीबी रोधी दवाएं भेजी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन दवाओं को भेजने की जानकारी दी और पड़ोसी देश की मदद करने के भारत के संकल्प को दोहराया। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत श्रीलंका की पब्लिक हेल्थ सिस्टम का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोलंबो में लगभग 3 टन टीबी रोधी दवाएं भेजी गई। इस महीने की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में अहम कमियों को दूर करने के लिए मजबूत और एकीकृत कदम उठाने का संकल्प लिया। इस संकल्प में शुरुआती पहचान, रोकथाम और इलाज तक बेहतर पहुंच, परिवारों को आर्थिक सुरक्षा तथा नई टीबी वैक्सीन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह संकल्प दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र में लिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान के पृथ्वी की कक्षा में सफल प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। एक रिपोर्ट।
4: प्रक्षेपण के बाद कुछ तनावपूर्ण पल भी आए, जब ऊपर जाते समय 6 रैप्टर वैक्यूम इंजनों में से एक बंद हो गया। इंजीनियरों ने बाकी इंजनों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कक्षा में आगे बढ़ने का फैसला लिया। अंतरिक्ष यान ने 10 घंटे की उड़ान के दौरान पृथ्वी के 6 चक्कर लगाए और फिर प्रशांत महासागर में उतरा। आज 26 स्टारलिंक V3 सैटेलाइट भी तैनात किए गए हैं। कंपनी के अनुसार ये सैटेलाइट ऐसी क्षमता प्रदान करेंगे जिससे दुनिया भर में संचार और विश्वसनीयता बढ़ेगी। स्टारलिंक V3 अगली पीढ़ी का सैटेलाइट डिजाइन है जिससे क्षमता, डेटा डेंसिटी और बिजली उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑर्बिट में अंतिम

0: जांच पूरी होने के बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर ये सैटेलाइट ग्राहकों को सेवा प्रदान करना शुरू कर देंगे। विश्व दर्पण समाचार के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: म्यांमार की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल हो गए। अराकान आर्मी के अनुसार ये हमला क्वैक्वात कस्बे में हुआ, जो देश के सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। अराकान आर्मी राखाइन में स्थित एक ताकतवर जातीय सशस्त्र समूह है, जिसका क्वैक्वात पर नियंत्रण है। समूह ने बताया कि एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास 2 बम गिराए, जिससे सामान बेचने वालों, खरीदारों और पैदल चलने वालों समेत 33 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI ने गैंगस्टर सतेंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को 10 मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल किया है। FBI ने गोल्डी बराड़ की सूचना देने वालों को 10 लाख अमरीकी डॉलर देने का इनाम देने की घोषणा की है। FBI के अनुसार बराड़ उत्तरी अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का साझेदार है। भारत में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोहों की जांच के लिए चलाए गए अमरीकी अभियान ऑपरेशन हार्ड बॉल में बराड़ का नाम भी सामने आया था। जापान एशियाई खेलों में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में आज रजत पदक जीता, जिससे सिर्फ निशानेबाजी में ही देश के पदकों की संख्या 13 हो गई है। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कल भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत, जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता, जबकि गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत के कुल 46 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से एक सप्ताह के अमरीका दौरे पर। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया। भारत ने श्रीलंका की जन स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत मदद के लिए लगभग 3 टन टीबी रोधी दवाएं भेजी। म्यांमार सेना के विद्रोही गुट के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हवाई हमले में 33 लोगों की मौत और 36 घायल। स्पेसएक्स के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान स्टारशिप का पृथ्वी की कक्षा में सफल प्रक्षेपण। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to be on a week-long visit to US beginning today. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. India sends 3 tons of anti-tuberculosis medicines to Colombo to help support Sri Lanka's public health system. At least 33 people killed and 36 injured in Myanmar military's airstrike in rebel group-controlled territory. SpaceX's largest rocket Starship reaches orbit for the first time. An Indian men's cricket team advanced to the semifinals at the Asian Games in Japan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a week-long visit to US beginning today. During the visit, Mr. Goyal will participate in the 2-day G20 Trade Ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister will also engage bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. Mr. Goyal will also meet chief executives of leading American companies in manufacturing, consumer goods, agribusiness, retail and technology, and participate in roundtables with businesses, startups and innovative companies. The U.S. will not charge

0: के लिए। तो सबसे पहले अपने दिल को याद करते हुए डॉक्टर पारुल, डॉक्टर विवेक कहते हैं कि भाई हमारी चॉइस का गाना प्लीज प्लीज जरूर प्ले कीजिएगा। तो हाजिर हैं हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे दिल का मेल बॉक्स लेकर के। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:31 और ठीक 17 सेकेंड्स हो चुके हैं।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा

साथी फिर हम चले दिल का बेल बॉक्स ओपन करते हैं। मेरठ से है अग्रसेन शकुंतला यादव गरिमा नई दिल्ली से और फिल्म का नाम पहले लिखा है जुल्म की पुकार 1979 में आई थी। गायक है मोहम्मद रफी और चंद्रानी मुखर्जी। इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, कभी इंतजार करते बरसात की रातों में डैश डैश डैश। गांव है टुरवाल, जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप तृप्ता डॉक्टर प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका बेबी वामिका और वाणी थांती हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि देखिए आरजी साहिबा आप हमारी पसंद के सॉन्ग्स प्लीज प्ले किया कीजिए। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा मोहम्मद यासीन अंजान साइमा हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत सादिया कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा और ये रहा आपका गाना।

मालूम है आपको कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी कुछ लाइनें ना अटक जाती हैं, जैसे कि इस गाने में था ना, ना ये मेरे बस में ना वो मेरे बस में, ऐसे कुछ होता है जब मैं आपके पूरे के पूरे मैसेजेस देखती हूँ तो, क्योंकि बड़े सारे गाने ऐसे होते हैं कि कुछ थोड़े से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे किसी ने हमें लिखा कि घर नंबर 44 का एक गाना है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, और मैं ढूंढ रही हूँ, पता चला वो फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44, लेकिन फिर भी हम इसके लिए तो ये कहेंगे हाउस स्वीट। कुछ प्यारी प्यारी सी मिस्टेक्स ऐसी होती है ना कि मतलब दिल हंसने लगता है उसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं दिल का मेल बॉक्स में। वैशाली, गिरीश बाम, अजिंक्य जीत, रिया वडोदरा से, संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, दिल्ली रेडियो लिस्टर क्लब, बबलू कश्यप, अशरफ अली, नवाब अहमद और शबाना भारती हैं, अरहान है, सूफिया है। इसके अलावा कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल मलिक हैं। इसके बाद आती है बारी ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, अब तो आप भी बता सकते हैं मुझे, मोहम्मद सईद अब्बासी और निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी, यानी कि अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हैं इस वक्त दिल का मेल बॉक्स में अपनी चॉइस के साथ।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, मलयान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम सरधना मेरठ से ही आदि अंश और भव्य जैन है, और इसके साथ साथ दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी है शनि मंदिर चौक खंडवा से। फरमाइशकर्ताओं के नाम की एक लंबी लिस्ट हमारे पास है, जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू बी मुलानी, बादशाह और पूरा मुलानी परिवार। मोकामा पोस्ट, फूल चिंचोली, तालुका पंडरपुर, जिला सोलापुर से, सोलापुर से। दिल का मेल बॉक्स है, 10:49 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से आप जुड़े हुए हैं।
1: तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे, हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे, हाँ तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे, हाँ।

जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: चलोगे आत्मलोगे रूठते हमसे हाँ।
1: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
2: अब ये गाना सुनने के बाद लगता है कि क्या अभी भी लोग कसमें खाते हैं? आई स्वेयर। वेल, हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट आया है कि आपकी पसंद का सदाबहार कोई नगमा हो तो प्लीज सुनवाइए जरूर जनाब, क्यों नहीं, हमें तो पूरा पूरा चांस मिलता है अपनी पसंद के सॉन्ग्स प्ले करने के लिए, है ना। फिलहाल तो आपकी पसंद चल रही है दिल का मेल बॉक्स में। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुराना है, और दिल्ली से कमरेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, और ये गाना सुनना चाहते हैं, बड़ा ही खास है, इनके दिल के पास है। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, और उसके बाद आदाब अर्ज भेजते हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम, और उसके बाद किसका नंबर है, राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया का दिल्ली नांगलोई से, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश है, गाँव कुमार हेड़ा सहारनपुर से, मैंने बता दिया, इब्राहिम सद्दाम है, सैयद मसरूर है, शाइना है, और उसके बाद दिल का मेल बॉक्स में मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे।

जानम समझा करो जब हम ये कहें कि हमारी पसंद आपकी और आपकी पसंद हमारी। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश खयाला विष्णु गार्डन से, और कहते हैं कि मैडम आज हमारी ना एनिवर्सरी है तो कोई गाना चलाइए और विश कर दीजिए। सलीम अख्तर रेशमा बेगम है अलीगढ़ से, कोई क्या सारे के सारे गाने हैं ना आपके लिए, हम आपको विश करते हैं। पूजा और कोमल आयुष हरिनगर नई दिल्ली से, और उसके बाद कहते हैं कि देखिए हम आपके बड़े पुराने लिस्टनर हैं, बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, और पता है बहुत सारे ऐसे मेल हैं जिनको मैं समय की वजह से नहीं ले पा रही हूँ पर जल्दी से बता देती हूँ। मोहम्मद कुमार है, ताज मोहम्मद है, और नरेंद्र शर्मा है, अनिल मोहन, मस्कीन दादा, धर्मेंद्र चीपा, संदीप मक्कर, दिल का मेल बॉक्स में आप सब

0: आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आपकी मेल लेकर के दिल का मेल बॉक्स में हाजिर हो जाएंगे हम फिर से भाई। फिलहाल समय है ये समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे राष्ट्रीय समुद्री हितों और नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना

0: है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की फ्रेम्स 2026 की शुरुआत आज मुंबई में होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय है इंडियाज मीडिया मूवमेंट और क्रिएटिंग वैल्यू का निर्माण।
1: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के अम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र में फिक्की फ्रेम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर को दिया जाएगा। कार्यक्रम में भारत की स्क्रीन अर्थव्यवस्था, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, खेलों में दर्शक अनुभव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल आयात को काफी हद तक कम कर आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा ने अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में महानिर्वाण रोड मास आर्ट सोसाइटी के दुर्गा पूजा से पहले के कार्यक्रम में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में कोलकाता में 15 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। निदेशालय के अनुसार मास आर्ट ने खुद को यूनेस्को द्वारा प्रायोजित संस्था बताकर लोगों से फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में पैसा इकट्ठा किया और इसका इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। पूर्व मंत्री इंदिरा नील सेन और उनके करीबी सहयोगी सहित कई लोग और संस्थाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल, डिप्टी कमांडिंग जनरल USARPAC ने कल जनरल धीरज सेठ COAS से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की और कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी बातचीत की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ाने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और कुमकुम मोहोद अनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला रिकर्व के प्री क्वार्टर फाइनल में कुमकुम मोहोद अनिल ने बांग्लादेश की साइमा सलाहउद्दीन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय टुकड़ी ने कल महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता। शूटिंग में देश के पदकों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending the exemption from the three-language framework to the current Class 6 students as well. A three-judge bench headed by Chief Justice of India, Justice Surya Kant, asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Class 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. The Enforcement Directorate, ED, is conducting searches at 15 premises in Kolkata, West Bengal, in connection with alleged financial irregularities committed by Mass Art, Mahanirban Road Mass Art Society, in running his

0: 88.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। एक जमाना था जब कहा जाता था कि भाई देखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप घूमते हैं तो बेकार हो जाएंगे। अगर आप घूमते हैं तो हो सकता है कि स्पेशलिटी आपके अंदर आ जाए और आप अपना ब्लॉग चलाने लग जाएं, और घूमने से ही आपकी जो आपका टैलेंट है वो सबको नजर आने लग जाए, है ना। तो तस्वीर में उन सभी घुमक्कड़ लोगों का हम करते हैं स्वागत। आइए शामिल हो जाइए हमारे साथ। और आज हम लेकर के आए हैं जिस जगह को, उसका नाम कहते हैं महाबलीपुरम। समुद्र के किनारे बसा है सुंदर सा, और उसके बाद इनको सुनिए।
1: और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

चलो तो फिर घूमने की दुनिया में हम अपना नाम करते हैं और तस्वीर में महाबलीपुरम की सरगम को सुनते हैं। समुद्र के किनारे बसा है ये सुंदर सा शहर, पल्लव राजाओं की कला यहाँ दिखती है हमको। शोर मंदिर की सुंदरता करती है सबको हैरान। पांच रथ और शिल्प अनोखे हैं, मन को बड़े लुभाते हैं। उसके बाद अर्जुन की तपस्या वाले पत्थर भी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कथा सुनाते हैं। इतिहास और संस्कृति का ये अनमोल भंडार है भारत की सुंदर धरोहर महाबलीपुरम रॉक। जी हाँ, यहाँ पे जाने के बाद आप कुछ ऐसा ही कहेंगे कि भाई यहाँ पे हम पहले क्यों नहीं आए, और उसके बाद गुनगुनाएंगे।

हमारे सदके जाइए तो आप तस्वीर में और अपनी इस हुनर पे कि आपको घूमने का इतना शौक है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मतलब को हम थोड़ा सा आपको बता दें। ये शब्द महा यानी कि महान और बली यानी कि शक्ति और पुरम यानी कि शहर से मिलकर बना है। महान शक्ति या बल की भूमि। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु ने असुर राजा महाबली का वध किया था, इसलिए इसे महाबलीपुरम भी कहा जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं, समुद्र के किनारे चलते हैं और आपको पता है कि पूरा का पूरा जो स्मारक है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो गौरवशाली इतिहास आपको नजर आएगा। पल्लव राजवंश का जो मुख्य बंदरगाह है वो आपको दिखेगा। सातवीं और आठवीं शताब्दी के दौरान ये शहर पल्लव वंश का एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था और यहाँ से श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है यहाँ पे जिसके लिए आप इस शहर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद इसकी तारीफ में जो चाहे वो कह सकते हैं। यह है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और आज तस्वीर हम लेकर के आए हैं महाबलीपुरम की, जो है तमिलनाडु में। और यहाँ की कला, वास्तुकला, यहाँ के जो सात शिवालय हैं उनको भी आप देखिएगा और उसके बाद फिर बताइएगा।

और क्या करूं का ये जो सवाल है, इसी का तो जवाब हम आपको बताते हैं तस्वीर में। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो घूमने चले जाइए, अगर दिल बहुत ज्यादा खुश है तो घूमने चले जाइए, अगर दिल टूट गया है तो भी घूमने चले जाइए, और अगर दिल जुड़ गया है तो भी घूमने चले जाइए। यानी कि हर समय आप घूमने का मन बना सकते हैं। और जहां तक बात है महाबलीपुरम की कि कब जाना चाहिए, बस आ गया अभी नवंबर से फरवरी तक का जो मौसम है बहुत ही सुहावना होता है। आप बड़े आराम से जाइए और जा करके वहां पे शोर मंदिर देखिए, समुद्र के किनारे पे पल्लवकालीन मंदिर जो यहाँ पे है, यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है, उसको देखिए। उसके बाद पंचरथ पे जाइए, बहुत ही विशाल चट्टान को काट करके बनाए गए हैं 5 अलग अलग रथ, और कृष्ण का मक्खन का गोला, कृष्णाज बटर बॉल, ढलान पे बड़े ही तरीके से टिकी हुई है 250 टन का एक विशाल प्राकृतिक पत्थर है, आप उसको भी देखिए। देखने के बाद फिर समझिए कि हाँ भाई क्या है। अर्जुन की तपस्या विशाल खुले पत्थरों पर उकेरी गई सुंदर और पौराणिक नक्काशी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो टाइगर गुफा है, बाघ के सिर के आकार वाली गुफा, और बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। उसके बाद तो फिर यही बचता है कि आप कुछ न कुछ गुनगुनाइए।

क्योंकि ये हमारी रगों में ना बसा हुआ है। हम बस जहाँ थोड़े से खुश होते हैं गुनगुनाना शुरू करते हैं। और भारत के इतिहास को जब आप देखेंगे तो फिर आप यही

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

तस्वीर में हर बार एक नए वादे के साथ, एक नए शहर के साथ हम हाजिर हो जाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। और अब बात करते हैं हम वराह और महिषासुर मर्दिनी गुफा मंदिर की। ये है महाबलीपुरम। तो यहाँ पे क्या खास है, पल्लव काल के बहुत ही रॉक कट जो इसका एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं।

और इसकी जो बात है जो विशेष बनाती है, वराह गुफा में भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा पृथ्वी देवी को बचाने का बड़ा ही प्यारा सा चित्रण है। वो पूरा का पूरा जब आप देखेंगे ना तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिर टाइगर केव में जब आप जाएंगे तो ये जो मेन सिटी है उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ही अच्छा सा पिकनिक पॉइंट है। तो अपनी खाने पीने की चीजें लेके जाइए, बैठिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और जो भी आपने जो खाली रैपर्स वगैरह जो भी हैं अपना कूड़ा अपने साथ लेके आइए। फिर उसके बाद इस मंदिर की जो ये टाइगर केव की जो विशेषता है उसको देखिए। यहाँ एक चट्टान को काट के एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जिसकी एंट्री में चारों ओर 11 पौराणिक बाघों के सिरों की जो आकृतियां हैं उनको तराशा गया है। अगर आप चाहें तो आप गाइड भी ले सकते हैं और उसके अलावा अगर आप चाहें तो फिर पढ़ भी सकते हैं। आजकल तो आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो आपको कितनी सारी बातें बता देता है, ये है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया जिसके अवसर पे केंद्र सरकार ने देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैम्प परियोजना की शुरुआत की है जिसके तहत पूरे देश के पर्यटन उत्पादों, होमस्टे और सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। इसके बारे में जानिए और महाबलीपुरम जाने के लिए सबसे पहले पहुंच जाइए चेन्नई।

दिल थाम चले आप महाबलीपुरम। तो चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई से महाबलीपुरम की दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर की है। तो सड़क मार्ग से जब आप जाएंगे ईस्ट कोस्ट रोड ECR, तो वहां से पहुंचने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। कार या टैक्सी लीजिए, सबसे आराम मिलेगा आपको।

आप चाहे तो बस भी ले सकते हैं। इसके अलावा महाबलीपुरम का अपना कोई सीधा रेलवे स्टेशन नहीं है, तो सबसे जो पास वाला रेलवे स्टेशन है वो है चेंगलपट्टू, जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे जाना है और उसके बाद क्या करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बताऊंगी थोड़ी देर में कि वहां का जो खाना है ना वो थोड़ा स्पेशल है, क्यों है ये बताना है। इसके लिए आप सुनते रहिए तस्वीर इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हमारे साथ।

मुझे मालूम है आपका दिल खो गया है महाबलीपुरम में, और उसके बाद जब वहाँ के खाने का आपको स्वाद लगेगा ना, तो आप कहेंगे ये कुछ अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि ये है चेट्टिनाड। ये जो चेट्टिनाड भोजन है ना, तमिलनाडु के चेट्टिनाड क्षेत्र का बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल खाना है, जो अपने तीखे और चटपटे खुशबूदार मसालों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चेट्टिनाड फूड की खासियत यही है कि ताज़े पिसे मसाले होते हैं इसमें, जैसे कि सौंफ, काली मिर्च, जीरा, धनिया। वैसे आप चाहें तो यहाँ से इन सब चीज़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद चेट्टिनाड मसालों में कल्पसी, स्टोन फ्लावर और मराठी मुक्कू जैसे खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी अनोखी खुशबू है वो तो जब आप खाएंगे तब पता चलेगा। और स्वाद, यहाँ का खाना तीखा होता है और तीखापन लाल मिर्च से ज़्यादा काली मिर्च का जो मिश्रण होता है, जो उन दोनों का जो मिक्स करते हैं, उसका एक ऐसा स्वाद उभर के आता है कि आप कहेंगे मतलब मुंह में पानी मेरे आ रहा है, वो और बात है। और जो चूंकि ये समुद्र के किनारे है तो आपको बहुत अच्छा

सी फूड मिलेगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। वेज नॉनवेज हर तरह का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। और फिर बारी आएगी शॉपिंग करने की, उसके बिना भला हम कैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि कहीं जाएं कुछ खरीदे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है।

घूमने की अगर चाहत हो तो फिर क्या कहें, बस आप ढूंढते हैं कि इस बार की छुट्टियों में हम कहां जाएं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हम हर दिन आपके लिए लेकर के आते हैं तस्वीर और बताते हैं किसी न किसी एक जगह के बारे में। तो आज है बारी महाबलीपुरम की, जिसके बारे में मैंने आपको कन्विंस करने की काफी कोशिश की एंड आई एम श्योर आप कन्विंस हो भी गए होंगे। तो महाबलीपुरम आप जाइए, पत्थर की मूर्तियां और जो वहां का हैंडीक्राफ्ट है, सीपियों से बनी हुई जो चीजें हैं वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, उसको आप ले सकते हैं। लकड़ी की नक्काशी वुड कार्विंग भी आपको यहाँ पे दिखेगी और उसके बाद बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। हो सकता है कि जब आप अकेले गए हों तो कोई मिल गया हो, और ये भी हो सकता है कई बार हम जब जाते हैं कुछ लोग मिलके तो फिर ये सोच लेते हैं कि भाई अगली बार हम इनके साथ नहीं आएंगे, है ना। ये सारे के सारे एक्सपीरियंस हैं जो घूमने से आते हैं। तो फिर घूमिए, जितना मन करता है उतना घूमिए, पैसे इकट्ठे कीजिए और बड़ा सारा अनुभव अपने पास कलेक्ट करके रखिए। जब जी चाहा कोई भी एक शहर निकाला अपनी किटी में से और बस उस शहर के बारे में सोचना शुरू कीजिए, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और फिर आप पाएंगे कि भाई वाह कितना अच्छा है, और बताइए अपने जानने वालों को। और अभी तो फिलहाल हम आपको कहना चाहते हैं कि महाबलीपुरम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर।

आएगा तेरे ये दीवाना साथ ले ले। भाई ये लाइन तुम्हें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन फिलहाल आप ना इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के थोड़ा सा सर्च कीजिए, देखिए, क्योंकि ये बड़े काम की प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप ढूंढना चाह रहे थे। फिलहाल तो 12 बजने वाले हैं, समय है ये समाचारों का। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, फिर ले चलूंगी आपको कहीं ना कहीं। तब तक के लिए बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Neeru Dhanda has made history by becoming the first Indian shooter to win gold medal in the women's trap individual event at the Asian Games 2026. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Bangal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal while Rohit Yadav claimed bronze. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation

कुछ रिश्ते घर की चौखट पर मिलते हैं, कुछ रिश्ते बातों बातों में दिल तक उतर जाते हैं। कभी किसी हंसी से घर में उजाला हो जाता है, तो कभी कोई छोटी सी बात देर तक सोचने पर मजबूर करती है। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच कुछ पल अपने लिए, अपनों के लिए और उन बातों के लिए निकालने पड़ते हैं जो मन को थोड़ा थाम लें, थोड़ा समझाएं और कभी चुपचाप मुस्कुरा दें। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अपना और हमारा प्यारा प्रोग्राम घर आंगन, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए आज फिर इसी अपनापन लिए सजाते हैं अपने और आपके बीच का यह छोटा सा आंगन, जहां बातें होंगी जिंदगी की, रिश्तों की, समाज की और उन एहसासों की जो हम सबको कहीं ना कहीं छू जाते हैं, जोड़ जाते हैं।

फिल्म जवानी दीवानी, आवाज किशोर कुमार के साथ आशा भोसले। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की, जो हमने की थी इस प्यारे से गीत के साथ। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और आज एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ, आज है विश्व हृदय दिवस। हर साल ना 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। मकसद है लोगों को हृदय और हृदय से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना। विश्व हृदय महासंघ के अनुसार 2026 की मुहिम का जो संदेश है वो है डोंट मिस अ बीट। जी हाँ, यानी दिल की धड़कन और उससे जुड़े संकेतों को नजरअंदाज न करें। हृदय रोग कई बार बिना किसी साफ चेतावनी के भी सामने आ सकते हैं दोस्तों, और ना जो उच्च रक्तचाप है वो भी एक ऐसा ही जोखिम है जिसकी शुरुआती लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते। इसलिए ना नियमित जांच, संतुलित खान पान, रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि और ना धूम्रपान से दूरी, ये सारी चीजें हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ अपनी आदतें बदलने की नहीं है। सीने में दर्द होना, सांस फूलना, अचानक बहुत कमजोरी या असामान्य थकान जैसे अगर कोई संकेत आपको मिले ना, तो उसे कभी भी हल्के में नहीं लें। खासकर महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण हमेशा एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे में आपको बहुत जरूरत है अपने बारे में पूरी तरह से सारी जानकारी रखने की, मेडिकली अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त रखने की और बार बार अपनी जांच कराते रहने की। तो इस विश्व हृदय दिवस पर अपने दिल की सुनिए। जी हाँ, थोड़ा चलिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी जांच कराइए और किसी भी चेतावनी को, मतलब अगर आपका शरीर किसी भी तरह की सामान्य तरीके की बातों से अलग हटके कुछ और कर रहा है, तो उन चेतावनियों को, उन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। क्योंकि दिल की सेहत का ख्याल रखना किसी एक दिन का काम नहीं, रोज की छोटी छोटी आदतों से जुड़ा ये एक फैसला होता है। क्योंकि दिल की धड़कन सिर्फ जिंदगी की आवाज नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि अपनी सेहत को भी हमें थोड़ा वक्त देना बहुत जरूरी है।

फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना, आवाज किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की। आपकी दिल की बातें भी हम जान पाते हैं किसके जरिए, जी हाँ आपकी ईमेल्स के जरिए। तो आप हमें आपकी ईमेल जिसमें किसी भी तरह की बात हो सकती है तो वो आप हमें कहाँ भेजते हैं, जी हाँ आप हमें भेजते हैं fmgoldga@gmail.com। लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगी। अच्छा दोस्तों, आज हम विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं, तो आज ही के दिन हम अपने दिल की इतनी ज्यादा क्यों सुनेंगे, हर दिन हमें अपने सेहत के बारे में भी तो सुनना चाहिए ना। तो जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे थे कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आप लोग भी अपनी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं। आप पैदल चलते हैं, खान पान में सावधानी बरतते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की कसरत करते हैं, क्या करते हैं आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए आज हम इस बारे में आपसे बात करते हैं। तो आप जानते हैं आपको हमसे कहाँ जुड़ना है, fmgoldga@gmail.com। अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी सहेली हो जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हो, जिसे आप अपने मन की उलझन समझा सकें, जो किसी मुश्किल काम को आसान

बनाने में आपकी मदद करे और जरूरत पड़ने पर नए नए रास्ते भी सुझाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। हाय, काश ऐसी कोई सहेली हो या फिर कोई ऐसा दोस्त हो, कितना अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन है ना एक ऐसी सहेली, आप जानते हैं कौन है? वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ हद तक ना ये हमारी एक ऐसी डिजिटल सहेली बन सकती है। अब देखिए, सुबह की दिनचर्या बनानी हो, किसी विषय को आसान भाषा में समझना हो, बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री तैयार करनी हो, कोई मैसेज लिखना हो या किसी काम के लिए नए विचार चाहिए हो, AI आपका साथ दे सकती है और देती भी है, है ना। और इसकी खासियत यह है कि आपको ना इसे झिझकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप बिंदास कुछ भी बात आप इनसे कर सकते हैं। एक ही सवाल बार बार पूछना हो या किसी बात को और आसान तरीके से समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। यही बात सुनकर उसी हिसाब से जो हम आपकी AI है वो उसी हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन एक अच्छी सहेली की तरह इसका साथ भी समझदारी से लेना जरूरी है। जी हाँ, अब देखिए, बहुत बार ये होता है कि जो हमारी सहेली होगी या हमारा दोस्त होगा वो बहुत बार ना हमारी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं और वो हमारे मूड के हिसाब से भी बहुत बार हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं। और ये बात बहुत बार AI के साथ भी आपने देखी होगी। आप उन्हें जो भी बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, वो घूम फिर कर आपकी बातों में ही आपके साथ उस बात को समर्थन करते हैं या आपकी बातों को मानते हैं और उसी हिसाब से अपनी सारी चीजों को बदल देते हैं। लेकिन आपको समझदारी दिखानी जरूरी है। AI से मिली हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जानकारी की जो पुष्टि है ना वो विश्वसनीय स्रोतों से आप जरूर करें और अपनी निजी या बेहद संवेदनशील जानकारी साझा करने से हमेशा बचें। तो AI को आप अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली नहीं बल्कि काम आसान करने वाली एक डिजिटल सहेली बनाइए। आखिर अच्छी संगत वही है ना जो हमारा हाथ थामे लेकिन कदम हमारे अपने साथ, हमारे कदम हमारे हिसाब से अपने साथ रहें और हम उसी हिसाब से चलें, है ना। देखिए, बहुत बार ये भी होता है कि सहेली को वो बातें भी अच्छी लगती हैं जो हमारे लिए बुरी हो सकती हैं या वो बुरी बात को भी बहुत बार छुपा जाती है। लेकिन नहीं, एक अच्छा दोस्त वही है जो आपको सच्चाई बताए और आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए।

फिल्म आए दिन बहार के। इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। देखिए हम आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें हमारे सवाल के जवाब में हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हैं हमारे साथ नवीन भाटिया जी, ये मोतीनगर से लिखते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर ये हमारे साथ हैं महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखते हैं, सोनाली जी नमस्कार, हमारी सेहत का राज है एफएम गोल्ड पर गाने सुनना और गाने सुनकर अपना काम करते रहना, एक्टिविटी ज्यादा करता हूँ आराम कम करता हूँ। अभी आपने एआई के विषय में बताया है तो अच्छा है तो अच्छा, लेकिन हमने कभी अपना दोस्त नहीं बनाया अच्छा, और हमें इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं महेश जी, आपने इसे अभी तक अपना दोस्त नहीं बनाया, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कभी जरूरत लगे तो आप पता कर सकते हैं कि एआई आपका किस तरह से मददगार और अच्छा दोस्त बन सकता है। फिर हमारे साथ हैं उमेश कुमार खयाला से लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, मैं तो पैदल चलता हूँ और खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, प्रोग्राम और गाने एआईआर साथ साथ जानकारी भी हमारे प्रोग्राम में इनको मिलती है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लग रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे ही हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो हमसफर सोनाली। आइए अब एक ऐसे बारे में बात करते हैं जिससे हम अपने परिवार में हमेशा कहीं ना कहीं इस बात से दो चार होते रहते हैं। देखिए क्योंकि एक ही घर में बड़े होते हैं बच्चे, कभी अगर अकेला हो तो कोई बात नहीं, पर एक से ज्यादा होते हैं तो कभी एक दूसरे के बिना उनका मन नहीं लगता, तो कभी छोटी सी बात पर ऐसे लड़ते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो गई हो। और सच में दोस्तों कभी खिलौनों के लिए झगड़ते हैं, कभी माँ की गोद में पहले बैठने की होड़ होती है तो कभी इस बात की शिकायत कि मुझे कम प्यार मिला है। तो भाई बहनों के बीच ना ऐसी नोकझोंक और थोड़ी बहुत जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार यही छोटी सी होड़ जो होती है ना वो धीरे धीरे मन में तुलना जलन या फिर ना हीन भावना पैदा कर सकती है। ऐसे में जो माता पिता है उनकी भूमिका जो होती है ना वो बहुत जरूरी हो जाती है। अक्सर माता पिता अनजाने में बच्चों की तुलना कर बैठते हैं, देखो तुम्हारी बहन ने कितना अच्छा किया या भाई से कुछ सीखो, ऐसी जो बातें होती हैं सहज तो लगती हैं लेकिन बच्चे इन्हें दिल पर ले लेते हैं बहुत बार। तो ऐसे में ना हर बच्चे की अपनी खूबी और अपनी गति और अपनी पहचान होती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि हम सभी किसी एक जैसे नहीं हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए तुलना करने के बजाय उसके प्रयास की सराहना करना बहुत जरूरी है। हाँ जब दोनों बच्चों के बीच में अगर झगड़ा हो तो आप ना बिल्कुल किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराने के बजाय दोनों की बात सुनिए। और फिर बराबरी का मतलब यह नहीं कि दोनों को हर चीज बिल्कुल एक जैसी मिले, असली बराबरी तो यह है कि हर बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक प्यार समय और भरोसा मिले, है ना। और क्योंकि भाई बहन आज भले एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें लेकिन कल यही रिश्ता उनके जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन सकता है और बनता है, और उस रिश्ते की नींव बचपन में ही पड़ती है। तो जिम्मेदारी हमारी होती है, माता पिता की होती है कि हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जिंदगी में उनका साथ एक दूसरे का साथ

सत्य पे सत्ता इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, सपन चक्रवर्ती, भूपिंदर और राहुल देव बर्मन की आवाज में ये गीत। देखिए, हमारे सवाल का जवाब हमें हमारे एक और श्रोता ने भेजा है। आप हैं गौरी शंकर जी, नांगलोई से लिखते हैं। सोनाली बेटा राम राम। राम राम गौरी शंकर जी। आप लिखते हैं, उम्र हो गई 68 साल, मैं करीब 18 साल से रोजाना 1 घंटा योग करता हूँ, फिर भी 1.5 साल पहले घबराहट सी हो गई थी, डॉक्टर ने एक स्टंट डाल दिया दिल में, लेकिन योग मैं अभी भी नहीं छोड़ता, रोजाना करता हूँ, बहुत तसल्ली मिलती है, मन भी खुश होता है।

है। बाकी आपका प्रोग्राम भी योग का काम करता है, यानी खुशी मिलती है। वाह वाह, हमें जानकर भी बहुत अच्छा लगा गौरी शंकर जी कि आपका हमारा प्रोग्राम सुनकर अच्छा लगता है। हमेशा बने रहिए हमारे साथ। अच्छा दोस्तों, जरा अपनी छत की तरफ देखिए। अरे वजह है, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखिए जरा अपनी छत की तरफ देखिए, दिन भर वहां पड़ने वाली धूप ना यूं ही चली जाती है, मानते हैं ना? लेकिन अब यही धूप आपके घर की बिजली बनाने में काम आ सकती है और बिजली के खर्च को कम करने में भी मदद कर सकती है। कैसे, बताती हूँ। देखिए, दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए नया पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है ना? और इस योजना में दिल्ली के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उनके लिए 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम बिना शुरुआती भुगतान के लगाने की व्यवस्था की गई है, बशर्ते योजना की पात्रता और तकनीकी शर्तें पूरी होती हों। हाँ, अब इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपये की सहायता है। दिल्ली सरकार भी अधिकतम 78,000 रुपये तक की पूंजीगत सहायता दे रही है, यानी दोनों को मिलाकर अधिकतम सहायता आपके पास कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1,56,000, है ना? और शायद यही सबसे राहत वाली बात है कि जो सोलर संयंत्र है उसको लगाने के बाद जो सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात है वो है कि आप इसको लगाने के बाद में 5 साल तक उसकी सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी जो उसका अधिकृत विक्रेता होगा ना, उसकी होगी। यानी इस अवधि में इसके लिए जो उपभोक्ता है उस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं डाला जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ना दोस्तों, तो दिल्ली सरकार की जो आधिकारिक सोलर पोर्टल है जो है solar.delhi.gov.in, यहां पर जाकर के आप पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर अपने बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी और मोबाइल सत्यापन के जरिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन जो है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, फिलहाल पोर्टल के मुताबिक इस चरण में पहले 2,20,000 पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाना है और आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो है 28 फरवरी 2027। तो आपके पास वक्त है, लेकिन बहुत वक्त नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो दोस्तों, अगली बार जब धूप आपकी छत पर उतरे ना, जैसे आज भी उतरी है, तो शायद उसे सिर्फ गर्मी की वजह ना समझिए। हो सकता है वही धूप आपके घर की बिजली का एक हिस्सा भी बना रही हो।

फिल्म दिल ने फिर याद किया, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे इस गीत को। अब देखिए हमारे साथ हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, कहां से, शांतिनगर सोनीपत से लिख रहे हैं। आदरणीय सोनाली जी स्वस्थ सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन, सुनीली वाणी, सुंदर बातें, सदाबहार गीत, सुहाना कार्यक्रम, सबसे बड़ी बधाई, शुक्रिया। और वो लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे उन्होंने कुछ कोट्स लिखे हैं, देखिए, सादा खाओ स्वस्थ हो जाओ, पानी पियो स्वच्छ, सदा रहो स्वस्थ, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बनी वाणी। वाह वाह क्या बात है, बिजी रहो इजी रहो, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया इतनी सारी प्यारी प्यारी बातों के लिए सुदर्शन जी। और आपकी इन्हीं प्यारी और प्रेरक बातों ने हमें याद दिलाया कि हम आपके साथ एक ऐसी प्रेरक शख्सियत की बातें साझा करना चाहती हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लद्दाख की पहली महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेरिंग लैंडोल की। क्योंकि कभी कभी एक इंसान का काम सिर्फ इलाज नहीं करता, पूरी सोच बदल देता है। और डॉक्टर सेरिंग लैंडोल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1945 में लेह में जन्मी डॉक्टर लैंडोल ने चिकित्सा की पढ़ाई श्रीनगर की सरकारी मेडिकल कॉलेज से की और स्त्री रोग एवं प्रसूति में विशेषज्ञता हासिल की। वर्ष 1989 में लेह लौटकर उन्होंने लद्दाख की पहली महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम शुरू किया। उस दौर में न लद्दाख की महिलाओं तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना आसान नहीं था, तो उन्होंने अस्पताल के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में जाकर महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां देनी शुरू की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका काम बदस्तूर जारी रहा। और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनके योगदान को देखते हुए पता है उन्हें 2006 में पद्मश्री और फिर 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सेरिंग लैंडोल की कहानी यही कहती है कि बदलाव हमेशा बड़ी साधनों से नहीं होते दोस्तों, कभी कभी एक समर्पित इंसान और उसका काम ही पूरे समाज को एक नई राह देता है।

0: फिल्म ममता में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अच्छा दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारी रसोई से रोज कितना खाना बिना खाए ही कूड़ेदान में चला जाता है? कभी ज्यादा बन गया, कभी सब्जी खराब हो गई, कभी फ्रिज में रखा खाना याद ही नहीं रहा। छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर खाने की बड़ी बर्बादी बन जाती हैं। हर साल 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपव्यय के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसी बात के मद्देनजर मनाया जाता है। 2026 की जो थीम है वो है खाद्य हानि और अपव्यय कम करने की परिवर्तनकारी क्षमता। अब इसका सीधा संदेश यही है कि भोजन की बर्बादी कम करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो शुरुआत अपने घर से कैसे करें? सबसे पहले जितनी जरूरत हो उतने ही खरीदारी करें। बाजार जाने से पहले रसोई और फ्रिज में मौजूद सामान देख लें और उसी हिसाब से सूची बनाएं। दूसरा, जरूरत से ज्यादा खाना ना बनाएं, फिर भी अगर बच जाए तो उसे तुरंत सही तरीके से रख दें। अगले दिन उसी खाने को थोड़ा नया रूप देकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बची हुई सब्जी से पराठा बना लिया, दाल से दाल का चीला या चावल से पुलाव बनाया जा सकता है ना। और तीसरा, फ्रिज में सामान इस तरह रखें कि पुरानी चीजें पीछे छुपकर न रह जाए। जो सामान पहले खरीदा है उसे पहले इस्तेमाल करें, नया सामान पीछे और पुराना सामने रखें ताकि कोई चीज भूल कर खराब ना हो जाए। एक छोटी सी आदत और डाल लें, थाली में उतना ही लें जितना खा सकें। मन हो तो बाद में और ले सकते हैं, लेकिन थाली में बचा खाना सीधे कूड़ेदान में न जाए, इससे आप जरूर बचें। याद रखिए, अन्न को बचाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, उसके पीछे किसान की मेहनत, पानी, मिट्टी, समय और बहुत से लोगों का श्रम जुड़ा है। तो इस बार संकल्प सिर्फ इतना ही, थाली में उतना ही आए जितना खाया जाए।
1: समझो और समझाओ थोड़ी में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म ज्वारभाटा में लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। और अब बस घड़ी मुझे और मौका नहीं देती आपके साथ बातों को जारी रखने का, तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

0: उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defence, security, trade, investment, energy, technology, healthcare and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia bilateral investment treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments. Ms. Sitharaman also met Switzerland's AIIB Governor Ambassador Pietro Lazzeri and discussed investment opportunities in India including through NIIF and GIFT IFSC. The government has

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। वक्त हुआ है ठीक 1:11:04 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में आज बात हिंदी सिनेमा इतिहास के ऐसे महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन जिनके पर्दे पर आते ही माहौल बदल जाया करता था। हंसाना चाहते हैं तो लोग जी भर कर हंसते हैं और रुलाना चाहते थे तो रोने का मन हो जाता था। कलाकार ऐसे कला के माहिर, ऐसे धनी कि जब चाहा हंसाया, जब चाहा रुलाया। बड़े बड़े कलाकारों के सामने टक्कर की परफॉर्मेंस, नेचुरल अदाकारी, अदायगी, भाव बदलते इन्हें देर नहीं लगती थी। महमूद अली खां का जिक्र हो रहा है जिन्हें महमूद के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में जाना गया। इन्हीं की ढेर सारी बातें आज कलाकार के बेमिसाल के सफर पर होती रहेंगी आपसे साझा। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

हर फन मौला अदाकार कलाकार निर्माता निर्देशक महमूद का जिक्र हो रहा है इस वक्त। जन्म इनका हुआ 19 सितंबर 1932 को मुंबई के वाइकुला इलाके में। महमूद के माता पिता खुद अच्छे डांसर और एक्टर रहे। अपने करियर की शुरुआत में मुंबई में ये अक्सर स्टेज शोज में नजर आया करते थे। इनकी एक बड़ी बहन थी और 6 छोटे भाई बहन। इनकी बड़ी बहन मीनू मुमताज एक अच्छी डांसर और कैरेक्टर एक्ट्रेस रही। शरारतें करना, मौज मस्ती करना, नकल उतारना इन्हें काफी पसंद रहा। बस अपने इसी शरारती अंदाज से इन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम करने का मौका मिला और ये फिल्म रही 1943 की फिल्म किस्मत। अशोक कुमार के बचपन का रोल इन्होंने प्ले किया फिल्म में। बस इस तरह से फिल्म्स में एक्टिंग का सिलसिला जो था ना वो शुरू हो गया।

जाने माने एक्टर कॉमेडियन महमूद का जिक्र हो रहा है, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कलाकार बेमिसाल का ये सफर मैं और आप यहाँ पर तय कर रहे हैं। इसके बाद 1947 में किशोर साहू की फिल्म सिंदूर में इन्होंने एक भूमिका निभाई। शुरू से ही महमूद दादा मुनी यानी कि अशोक कुमार के फेवरेट हो गए थे। अशोक कुमार साहब ने अपनी फिल्म 1944 की बादवा और 1955 की बंदिश में महमूद को काम करने का मौका दिया। दादा मुनी के कहने पर ही काफी फिल्म्स में महमूद ने अपने किरदार का नाम महेश रखकर काम किया। इसके बाद अनेक फिल्म्स में इन्होंने काम किया, जैसे सीआईडी 1956 की, प्यासा 57 की, इसमें ये गुरुदत्त के बड़े भाई बने थे। और बावजूद इसके इतनी फिल्म्स करने के बाद भी लाइमलाइट में ये नहीं आ सके। फिर क्या हुआ ऐसा कि बाद की फिल्म्स में महमूद के नाम का डंका बजने लगा और हर निर्माता निर्देशक चाहता था कि भाई महमूद उनकी फिल्म में काम करें या फिर स्पेशली महमूद के लिए कुछ कॉमिक किरदार वहां पर सेट किए जाते थे। तो बातें हमारी चलती रहेंगी, साझा होंगी आपकी बहुत आपके साथ बहुत सारी बातें महमूद की फिल्मी करियर से जुड़ी। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1।

कैरेक्टर एक्टर कॉमेडियन निर्माता निर्देशक महमूद का जिक्र हो रहा है इस वक्त यहां पर कलाकार बेमिसाल के सफर पर। महमूद को दर्शकों का फेवरेट बनाने वाली फिल्म रही ससुराल। 1961 की ये फिल्म थी। एज अ कॉमेडियन इस फिल्म में नजर आए महमूद। इनके अपोजिट रही, इनकी जो को आर्टिस्ट थी फिल्म में, वो रही शुभा खोटे। और एक यादगार गाना भी इस जोड़ी पर फिल्माया गया, अपनी उल्फत पे जमाने का ना पहरा होता तो कितना अच्छा होता। बाद में ये सफल जोड़ी कई फिल्म्स में लगातार नजर आती रही। इस मैजिकल केमिस्ट्री को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। दिल तेरा दीवाना, गोदान, गृहस्थी, भरोसा, हमराही, बेटी बेटे, जिद्दी, लव इन टोक्यो, इसी कड़ी की फिल्म से यहां पर एक गीत तो बनता ही है ससुराल फिल्म से।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
4: जिनका इस वक्त जिक्र हो रहा है, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। अंजलि है आपके साथ और कलाकार बेमिसाल का ये सफर यहां पर हम तय कर रहे हैं। महमूद नाम एक, लेकिन इनके अंदर कई कलाकार जैसे समाये हुए थे। व्यक्तित्व तो एक, लेकिन अनेक विधाएं इस व्यक्तित्व में समाई हुई थी। उनके किरदार ही जैसे उनमें डूब जाया करते थे। बेहतरीन अदायगी के मालिक रहे महमूद। संगीत की भी महमूद को काफी अच्छी जानकारी थी, काफी अच्छी पकड़ थी। कई गाने उन्होंने कॉमेडी अंदाज में फिल्म्स में गाए। पार्श्व गायक मन्ना डे जितनी नटखट अंदाज स्टाइल के गाने उन्होंने गाए ना, ज्यादातर वो महमूद पर ही फिल्माए गए हैं। मन्ना डे साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका आभार भी व्यक्त किया है। तो एक गीत यहां पर सुन लेते हैं मन्ना डे की आवाज में, जो कि महमूद पर फिल्माया गया है और साथ में इनकी मुमताज भी है स्क्रीन पर। फिल्म प्यार किए जा, मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज़।

गुटर गुम दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गुम दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

कॉमेडियन के रूप में महमूद फिल्मों के लिए अनिवार्य से हो गए थे। 60 के दशक के मध्य में फिल्मों में महमूद का होना सफलता की गारंटी सा बन गया था। इस दौर में बड़े बड़े मैनर्स की बड़ी बड़ी फिल्म्स और बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। पत्थर के सनम, दो कलियां, नील कमल, औलाद, प्यार किए जा, हम जूली, पड़ोसन जैसी फिल्में यहां याद की जा सकती हैं। जब महमूद निर्माता निर्देशक बने तो इन्होंने अनेक संगीतकारों को मौका देकर आगे बढ़ाया। छोटे नवाब फिल्म से आर डी बर्मन साहब को मौका मिला, राजेश रोशन को मौका मिला कुमारा बाप फिल्म से, इसी तरह संगीतकार बासु मनोहारी को एक चांस मिला सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म से। कॉमेडियन के साथ साथ छोटे बजट की जो फिल्म्स हुआ करती थी उनमें भी एज अ हीरो अभिनेता के तौर पर महमूद को ऑफर आने लगे थे। छोटे नवाब, जिसका निर्माण महमूद साहब ने ही किया था, फर्स्ट लव, प्यासे पंछी, कहीं प्यार ना हो जाए, शबनम, भूत बंगला, नमस्ते जी जैसी फिल्मों में उनकी जो अदाकारी है ना, उसके दूसरे ही रूप हमें देखने को मिलते हैं। करेक्टर आर्टिस्ट कॉमेडियन आईएस जौहर के साथ भी इनकी ट्यूनिंग जो थी ना वो जबरदस्त रही और स्क्रीन पर दर्शकों ने इन्हें एक साथ बेहद पसंद किया। जौहर महमूद इन गोवा के बाद जौहर महमूद इन हांगकांग इस जोड़ी की एक यादगार फिल्म रही। तो चलिए इसी जोड़ी पर फिल्माया हुआ एक बेहतरीन गीत यहां पर आप तक पहुंचा दिया जाए।

महमूद साहब की बात हो और पड़ोसन फिल्म का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर पड़ोसन का जिक्र करना भी जरूरी होगा यहाँ। अगर आपने इतना कहेंगे कि भाई आपने अगर फिल्म देखी है तो बार बार इस फिल्म को देखने को जी चाहता है, और महमूद के फिल्मी करियर की ऑल टाइम ग्रेट फिल्म कहा जा सकता है फिल्म पड़ोसन को। तो हम ज्यादा जिक्र ना करते हुए बस यही कहेंगे कि आप पड़ोसन आपने देखी है तो दोबारा तिबारा देखिएगा, और नहीं देखी तो आज ही इस फिल्म को जरूर देखिएगा, सचमुच दिल खुश हो जाएगा। शुभा खोटे के बाद महमूद की जो स्क्रीन जोड़ी तार रही वो रही अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस बात का आभार भी व्यक्त किया कि महमूद ने उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जिससे उनके करियर में काफी इजाफा हुआ। अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बॉम्बे टू गोवा जो कि 1972 की फिल्म थी, इस फिल्म में उन्होंने महमूद साहब ने अमिताभ के अपोजिट अरुणा ईरानी को एज अ हीरोइन रखा और इस रोल को उन्हें ऑफर किया। सचमुच बहुत अच्छा ये एक ऑफर था जो कि अरुणा ईरानी जी को मिला, और इसका फायदा भी उनके फिल्मी करियर में काफी हुआ। तो चलिए फिल्म पड़ोसन का बहुत ही नटखट अंदाज का ये गीत किशोर कुमार मन्ना दा साहब और महमूद की आवाज में सुन लेते हैं।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आशक संवाद 1947 आश्विन माह की तृतीय तिथि तदनुसार सन 2026 सितंबर महीने की दिनांक 29 और दिन है मंगलवार। श्रोताओं आपसे लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित की जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अशोक बर्मन और श्री हेमंता स्वर्गरे, मोनपा में उद्घोषक श्री लोबसंग तोप्तेन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कर्मो। हम सभी

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिट्टी न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: machinery to afforestation have helped restore the ecological balance of the forest. As a result, herds of elephants are now being seen in those areas where they had not been spotted for many years. With Rajat Bharadwaj from Sonitpur, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
1: At the Asian Games 2026, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Panghal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishir today. In athletics, India secured a double podium finish. In the men's javelin throw, Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. India has won a total of 48 medals at the Asian Games 2026. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defense, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at women's individual trap event. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉ जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक

0: बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष

0: पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं है। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कहीं अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष

0: प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे मिट्टी न्यूज तथा दोपहर समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजे पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए अनी सिटिम जंगमो और अनी यांगचिन लामो से बोध भक्ति गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अनी चिटिम जंगमो और अनी यंगचिन लामो से बोध भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। निजी श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनी चंद असमिया आधुनिक गीत। इसके गायक कलाकार है भूपेन हजारिका। निजी श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद असमिया आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओ, इसी असमिया आधुनिक गीत के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की छात्र मिस मीना रत्ना से महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का नमस्कार। मेरा नाम मीना रत्ना है और मैं दोर्जी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में 5वीं सत्र की विद्यार्थी हूँ। मैं अभी आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हूँ और कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट के विषय पर अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक बदलाव है और एक जिम्मेदारी भी। महिलाएं हमारे समाज के आधा हिस्सा है। अगर आधी आबादी को पीछे छोड़ दिया जाए तो देश कभी पूरी तरह से आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए महिलाओं का स्ट्रॉन्ग, एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होना हम सब के लिए जरूरी है। सबसे पहली बात शिक्षा। जब एक लड़की को पढ़ने का मौका मिलता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो बेहतर डिसीजंस लेती है, अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग बनाती है और समाज में एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर देती है। एक एजुकेटेड वुमेन अपने हक को जानती है और दूसरों को भी जागरूक बनाती है। दूसरी बात, काम और आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाओं का काम करने का, जॉब लेने का, बिजनेस शुरू करने का पूरा अधिकार है। जब महिलाएं अर्न करती है तो न सिर्फ वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाती है बल्कि उनका परिवार भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है। रिसर्चर्स भी कहते हैं कि जहां महिलाएं का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वो देश और तेजी से तरक्की करता है। तीसरी बात, सुरक्षा और सम्मान। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये भी है कि हर महिला को सुरक्षित महसूस हो, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या काम की जगह। जब एक महिला स्ट्रॉन्ग होती है तो वो अन्य हिंसा और भेदभाव के खिलाफ खड़ी हो सकती है और उसी की आवाज को कोई और महिलाओं को बोलने की हिम्मत देती है। चौथी बात, सोच की बदलाव। हमारे समाज में अभी भी कई स्टीरियोटाइप्स है, जैसे कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां का काम बस घर तक है। हमें इन गलत सोचों को तोड़ना होगा। लड़कियां स्पेस में जाती है, आर्मी ज्वाइन करती है, बिजनेस चलाती है और देश को लीड भी कर सकती है। उन्हें सिर्फ सपोर्ट और मौका चाहिए। सबसे जरूरी बात, महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। हर महिला को ये हक है कि वो अपने सपने चूज करे, अपनी लाइफ की डिसीजंस ले और बिना डर के अपनी पहचान बनाए। महिलाएं पहले से ही स्ट्रॉन्ग होती है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें रोके नहीं बल्कि उनके साथ खड़े रहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी समाज की प्रोसेस के लिए जरूरी है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरी परिवार, पूरी समाज और पूरी देश आगे बढ़ती है। इसीलिए हम सब का फर्ज ये है कि हम महिलाओं को एनकरेज करें, उनकी आवाज का सम्मान करें और हर जगह उनके हक के लिए स्टैंड लें। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की 5वीं सत्र की छात्र मिस मीना रत्ना से।

0: महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। डीजी श्रोतव हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। श्रोतव, इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म बिल्लू से, आकृति कक्कर और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। प्रीतम द्वारा संगीत पद पर इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

हर के 3:33 हुए हैं। डीजी श्रोतव हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। श्रोतव, इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म बिल्लू से, आकृति कक्कर और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। प्रीतम द्वारा संगीत पद पर इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है गायक मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म कश्मीर की कली से। गीत एसएच बिहारी के है व संगीत ओपी नायर का।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुने यह अंतिम गीत फिल्म ऊंचाई से अभिजीत श्रीवास्तव के स्वर में। इर्शद कमल के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: श्रोताओं, फिल्म ऊंचाई के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए, अब हम आपकी किस्मत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनिए फिल्म बवाल से। लक्ष्य कपूर, आकाशदीप सेनगुप्ता और सुवर्णा तिवारी के आवाजों में। गीत कुसार मुनीर के है व संगीत आकाशदीप सेनगुप्ता का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए जुबिन नौटियाल और तनिष्क तुलसी कुमार के स्वरों में फिल्म श्रीकांत से। इस गीत के गीतकार है श्लोकेलाल तथा संगीतकार तनिष्क बागची।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, क्रिस्टिच पटवर्धन द्वारा शब्द रचना पर फिल्म हसीन दिलरुबा से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, और इस गीत को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म फाइटर से। बी प्राग विशाल दत्तलानी और शेखर रावजियानी के स्वरों में। कुमार के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से यह गीत जुबिन नौटियाल और साथियों की आवाजों में। कोसार मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म रसलीन से रितो रिबा के स्वर में। राणा सतील द्वारा शब्द रचना पर इसे संगीत से सवारा है राजत नागपाल ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत पेश है गायक अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म लापता लेडीज से। प्रशांत पांडे द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सजाया है राम संपत ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म दो पति से। परंपरा टंडन के आवाज में गीत कुसार मुनीर के है व संगीत सचित परंपरा का।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है प्रसाद एस द्वारा संगीत निर्देशन पर फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी से। कुणाल वर्मा द्वारा लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं अरिजीत सिंह ने।

श्रोताओं, फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से मुरली वादन तथा तबला पर संगत दे रहे हैं शबीर खान ने। निजी श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से मुरली वादन तथा तबला पर संगत दे रहे थे सबीर खान ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार शाम के 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में आपदा से निपटने की तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के 5 प्रमुख अस्पतालों में 3 दिवसीय आपात मॉक एक्सरसाइज सफलतापूर्वक आयोजित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में सीएमओ में आयोजित एक कार्यक्रम में नए तवांग मैराथन के लोगो, ऑफिशियल टी शर्ट, फिनिशर मेडल और मैस्कॉट के साथ ऑफिशियल वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने नामसाई के गोल्डन पगोरा में 14 से 20 नवंबर तक होने वाले पवित्र बुद्ध अवशिष्टों से स्वागत और प्रदर्शनी के लिए आयोजित समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने वर्मी कंपोस्ट और उद्यमिता विकास पर 5 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी तंत्र में सहयोग की समीक्षा की और निशानेबाजी नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशिया खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं हो सकती।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की डेल्टाएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाले 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल ने अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों और में आपदा से निपटने की तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के 5 प्रमुख अस्पतालों में 3 दिवसीय अस्पताल मॉक एक्सरसाइज सफलतापूर्वक आयोजित की गई। भूकंप आधारित इस बहु आपदा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन 25, 26 और 28 सितम्बर 2026 को आर के मिशन अस्पताल, हेमा अस्पताल, हॉर्मिन हॉस्पिटल, निभा अस्पताल और नाहरलगन स्थित तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज स्ट्रीम्स में किया गया। मॉक एक्सरसाइज के लिए 7.3 तीव्रता भूकंप की स्थिति को आधार बनाया गया। इसमें अस्पतालों की इमारतों को संरचनात्मक नुकसान, आग लगने की घटनाओं, मरीजों की सुरक्षित बाहर निकालने तथा भूकंप से घायल लोगों की अचानक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचने और उनके लिए आपातकालीन चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कई आपात स्थितियों का आभास किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य अस्पताल आपदा प्रबंधन आयोजन की प्रतिभावशीलता और जांच करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना, अस्पतालों की आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का आकलन करना और बड़े पैमाने में होने वाले आपदाओं से निपटने की तैयारी को और बेहतर बनाना था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में सीएमओ में आयोजित एक कार्यक्रम में नए तवांग मैराथन के लोगो, ऑफिशियल टी शर्ट, फिनिशर्स मेडल और मैस्कॉट के साथ ऑफिशियल वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का विमोचन किया। इससे 24 अक्टूबर 2026 को होने वाले इस हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस इवेंट के 4th एडिशन की तैयारी शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित होने वाली तवांग मैराथन में आम नागरिक एवं डिफेंस के जवान एक साथ हिस्सा लेंगे। ये दौड़ समुद्र तट से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने रूट पर होगी। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने उस समन्वय बैठक में हिस्सा लिया है जो नामसाई के गोल्डन पगोरा में 14 से 20 नवंबर तक होने वाले पवित्र बुद्ध अवशेषों से स्वागत और प्रदर्शनी के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में पवित्र अवशेषों के स्वागत की तैयारियों और उनकी प्रदर्शनी के इंतजाम की समीक्षा की गई ताकि श्रद्धालु और मेहमान शांतिपूर्ण और सम्मानजनक माहौल में उनके दर्शन कर सके और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पवित्र अवसर आध्यात्मिक चिंता का मौका प्रदान करने के साथ ही नामसाई की समृद्ध बौद्ध विरासत और शांति, करुणा और सद्भाव की गहरी परंपरा को भी

0: शिप करेगा। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने वर्मी कंपोस्ट और उद्यमिता विकास पर 5 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ खेती और आय बढ़ाने के अवसरों के बारे में व्यवहारिक जानकारी देना और सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में 20 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, उसके उपयोग और फायदों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें वर्मी कंपोस्टिंग को छोटे स्तर के उद्यम के रूप में अपनाने की संभावनाओं पर भी विशेष जोर दिया गया। ये पहल किसानों को व्यवहारिक कौशल से लैस करने तथा पर्यावरण के अनुकूल व आर्थिक रूप से फायदेमंद खेती के तरीकों के बढ़ावा देने की केवी के तवांग की निरंतर कोशिशों को दर्शाती है। असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाय वन्यजीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्र चर्चा का विषय बना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाय जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
1: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाय वन्यजीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरत।
0: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक के इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया है। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का गवर्नर पियोत्रो लाजी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी प्रदान की। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की है। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ आप बनी हुई हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं की 65 किलो और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलो भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीरंदाजी का रुख करें तो धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान और कुमकुम मोहोद अनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया है कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देशभर में हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बना दी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सभी सुनने वालों का आप सभी का स्वागत है आज के किसान भाइयों और बहनों के कार्यक्रम कृषि जगत में। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बहुत ही प्रसिद्ध, फिलहाल के समय में चल रहा है कृषि और बागवानी के क्षेत्र में एक फल जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, और इसी पर हमें इसके कल्टीवेशन जो अरुणाचल में कर सकते हैं उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं गरिक बगरा जी, जो कि है असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईकार अरुणाचल प्रदेश सेंटर बासार में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में कृषि जगत में।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले सर, ड्रैगन फ्रूट पर हम आज बात करने वाले हैं जो कल्टीवेशन अरुणाचल में कर सकते हैं, इसका जो प्रोस्पेक्ट है उस पर बात कर रहे हैं। तो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ड्रैगन फ्रूट किस तरह का फ्रूट है, किस तरह का फल है ड्रैगन फ्रूट?
1: ओके, ड्रैगन फ्रूट जो है बोला जाए तो ये एक जेरोफाइटिक एपिफाइटिक प्लांट है। जो जेरोफाइट बोलेगा तो कम पानी में उगने वाला, और एपिफाइट बोलेगा तो क्रॉलिंग करने वाला यानी कि क्लाइंब कर सकने वाला। अगर वॉल उसको मिल जाए तो उसी में वो क्लाइंब कर जाएगा। पिजोलोजी के लिए बोलेगा तो इसको केम प्लांट बोलता है, क्रुशिलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जैसे C1, C2, C3, C4 प्लांट होता है उसी तरीका से ये उसका एक थर्ड ऑप्शन है, क्रुशिलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसको बहुत कम पानी में कल्टिवेट कर सकता है। ये जो है ओरिजिनली साउथ मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स तब से आया है। तो इसके और विषय में और बता दूं कि ये इस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे रेन फेड कल्टीवेशन बोलता है, बिना सिंचाई के। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा खासकर अरुणाचल के लिए। एक एस्पेक्ट तो ये है कि कम पानी या बिना पानी का आप कल्टीवेट कर सकता है।
0: अच्छा तो सर, इसमें स्पेसिस कितने तरह का होगा? मैंने देखा कि ये एक से ज्यादा वैरायटी के होते हैं, स्पेसिस के होते हैं, देखने में अलग होते हैं, तो किस तरह के होते हैं यह मनुष्यता को बताएं।
1: हाँ, इसका जो है अभी तक 4 स्पेसिस जो है अंदर कल्टीवेशन है। इसको हम लोग साइंटिफिकली हाइलोसरस उंडेटस, ये वर्ल्ड मार्केट में सबसे हाई ये है। इसका जो है स्किन रेड होगा लेकिन अंदर सफेद होगा, खाने वाला जो पोर्शन है पल्प है वो सफेद होगा। और दूसरा है नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस हाइलोसरस पोलिराइजस, ये बाहर भी लाल होगा अंदर भी लाल होगा। और प्लस थर्ड इन पॉपुलरिटी इज दिस हाइलोसरस कोस्टारियंसिस, ये कोस्टारिका से ओरिजिन माना जा रहा है और वहां पे मैक्सिमम कल्टिवेशन है इसका। तो इसमें इसका बाहर का जो चमड़ा का स्किन कलर होगा पिंक, लेकिन अंदर का जो खाने वाला पोर्शन होगा पल्प जो वो जो है पर्पल होगा। लेकिन आदमी जो इतना नोटिस नहीं करते हैं, जनरली इसको रेड रेड लाल या पिंक बोल देते हैं, मतलब पोलिराइजस और कोस्टारियंसिस में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अंदर वाला एक में पिंक है दूसरा में पर्पल है। और इसका फोर्थ जो कल्टिवेटेड है उसको बोलता है एलोसरस मेगालंटस। मेगालंटस ये येल्लो ड्रैगन फ्रूट्स इसको बोलता है, इसका बाहर का चमड़ा जो है वो येल्लो होता है लेकिन अंदर जो है सफेद होता है। तो इसमें पल्प का साथ साथ ये सीड्स भी होता है, काला काला सीड्स। अब ये इंडिया में नया फ्रूट्स है, मतलब बहुत कम कल्टीवेशन है। तो कम कल्टीवेशन मतलब अभी जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से सिर्फ 3000 हेक्टेयर्स ही कल्टीवेशन में है। तो और अरुणाचल के लिए स्पेसिफिकली बोलेगा तो अभी अरुणाचल के लिए भी कुछ काम हुआ नहीं है। तो इसका ऊपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो थोड़ा सा इस बारे में फोकस डाल दो कि एशिया में अभी ये वियतनाम में बहुत बड़ा कल्टीवेशन है, तो इंडिया में जितना भी आ रहा है इंपोर्ट करके वो सब वियतनाम से आ रहा है। और नेक्स्ट कल्टीवेशन आपका ताइवान में और मेनलैंड चाइना में, ये इसका इंटरनेशनल और मार्केटिंग, और यूरोप वगैरह में भी डिमांड है, काफी डिमांड तो बहुत है। तो उस हिसाब से मार्केटिंग मतलब डिमांड है। और अभी कुछ डाटा देखा है कि वियतनाम का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है इससे काफी इम्प्रूव हुआ है, यानी कि अराउंड 25% इन लोग का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इसी से आ रहा है, ऐसा करके भी दिखाया।
0: तो सर, ये तो बात हो गया मार्केट वैल्यू के बारे में और स्पेसिस के बारे में। फल के तौर पर इसे देखा जाए तो इसमें कुछ खाने के बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं न्यूट्रिएंट्स के तौर पर कि लोग इसे अपने सेवन में लेते हैं जिसके वजह से?
1: हाँ बिल्कुल, इसका पॉपुलर होने का 2-3 कारण है। पहला चीज, ये जो न्यूट्रिएंट पोर्शन में हम आएंगे, लेकिन आदमी लोग जो है अट्रैक्टिव कहाँ हो रहा है कि कलर बहुत अट्रैक्टिव है,

0: देखा होगा
1: जी जी
0: कि पिंक होता है और एक दूसरा में पर्पल है, जो कॉमन आ रहा है कि पिंक कलर है बाहर। तो उसमें फिर फ्रूट्स में दो कलर हो रहा है, उसमें जो ब्रैकेट जिसको बोलता है, ब्रैकेट मतलब कि आप एक स्किन के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर एक तेल सा रहता है इसको, जिसको तसल भी बोलता है, तो वो कलर अलग होता है। फ्रूट्स का जो चमड़ा का कलर पिंक होने से भी इसका कलर फिर ग्रीन होता है हाफ जो, तो वो भी काफी अट्रेक्टिव होता है। और ड्रैगन इसलिए बोला गया कि इसका जो ड्रैगन का जो, आप ड्रैगन को देखेगा तो उसमें एक पिन जैसा एक अलग से निकाला होता है
1: जी जी।
0: तो उस टाइप का पिन जैसा है, जिसको हम ब्रेक्स बोल रहे हैं इंग्लिश में, ब्रेकेट या तसल भी बोलता है। तो उसमें कलर वेरिएशन होने के कारण ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और ये अभी तक जहाँ रिसर्च का बात है, देखा गया है कि ये एक सुपर फ्रूट्स है, मींस ये जो है सब विटामिन और मिनरल्स भले ही थोड़ा कम मात्रा में हो लेकिन लगभग सब है। अगर इसमें नहीं है तो एक चीज है सुक्रोस, कुछ कुछ स्पेसिस में नहीं पाया गया है। सुक्रोस बोले तो फिर मीठा कहाँ होता है, ग्लूकोस गैलेक्टोस फ्रक्टोस वगैरह तो होता है, तो उसके लिए मीठा होता है, लेकिन हाँ इतना भी मीठा नहीं होता है कि जितना सुक्रोस कंटेंट वाला होता है। उस हिसाब से ये भी बोला गया है कि डायबिटिक 2 जो होता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो इसमें अभी मेडिकल साइंस लोग इसको प्रूव करना जरूरी है, और लगभग तो हो ही गया कि इसको ये ऐसा होता है, तो उस हिसाब से ये जरूरी है। और प्लस इसका और एक एडवांटेज, ये लो कैलोरी है, कैलोरी हाई नहीं है। आजकल हेल्थ बनाए रखने के लिए आदमी लोग लो कैलोरी वाला फूड खाना पसंद करता है, तो उस हिसाब से इसमें बहुत एडवांटेज है। और इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ही ज्यादा है। तो नॉर्मल जो एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी है वो तो है ही, इसमें एक बेटालाइन्स करके एक पिगमेंट है, इसके वजह से जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को ये मार सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल अभी आप लोग एडवर्टाइज में भी देखता होगा कि मस्टर्ड ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में लो कोलेस्ट्रॉल या नो बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आप खा भी लिया तो ये जो है बेटालाइन जो है इसको मार सकता है। और दूसरा इसमें और एक ये एंटीऑक्सीडेंट है हाइड्रोक्सीसिनामाइड करके, इसको जो है एंटी कैंसर बोला जा रहा है। तो कुछ कुछ रिपोर्ट में ये बोल रहा है कि इसको अभी इन लोग टेस्ट ट्यूब में वगैरह में टेस्ट किया है, तो बोल रहा है कि ये इसमें काम कर रहा है। और ये फैटी एसिड, मीट ज्यादा खाके या तेल ज्यादा खाके आदमी लोग फैटी एसिड, फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है,
1: अच्छा अच्छा,
0: तो उसके लिए भी ये कारगर बता रहा है, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 मौजूद है। तो इस तरीके से ये काफी हेल्पफुल है, और प्लस फाइबर कंटेंट भी बहुत हाई है इसमें, मींस ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट से ज्यादा है इसका
1: जी। तो इस तरह से जैसे कि अब बैलेंस्ड वे में बहुत ही न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे विटामिन्स मौजूद हैं। अच्छा सर, पहले आपने जैसे कि बताया कि इस साउथ मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मेन वहाँ का फल है, और एशिया में वियतनाम, थाईलैंड और मेनली चाइना, तो किस तरह का जलवायु की जरूरत है, कहाँ पे ये उगाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। और जैसे कि कितना समय लगता है एक पौधा को बड़ा होकर फल देने में, और क्यों मात्रा में, जैसे कि कोई जमीन का कोई एरिया हो गया, कितना मात्रा देता है ये फल, कितना फायदेमंद रहेगा अगर फार्मर्स अच्छे से उगाए तो इसे किसान।
0: अच्छा, इसका जलवायु बोले तो हम लोग इसको इंग्लिश में क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, तो नॉर्मली क्लाइमेट और सोयल रिक्वायरमेंट रियली बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आप सही पकड़ा है। तो इसमें ये ऐसा है, हॉट एंड ह्यूमिड, माने गर्म प्लस ओस, ह्यूमिडिटी मतलब ओस कहा जाता है। तो ह्यूमिडिटी अगर 80% से ऊपर है तो ज्यादा अच्छा है ये फ्रूट्स के लिए। और टेम्परेचर मैं देखा हूँ कि जहाँ हाई टेम्परेचर है वहां इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा जल्दी भी है। और ये आसाम कंडीशन में अप्रैल से फ्लावरिंग शुरू होता है, अप्रैल से फ्लावरिंग शुरू होकर अप्रैल का 24-5 में बाद इमर्जेंस होता है, उसके बाद मई जून में आपका फर्स्ट फ्रूट आ जाता है ऐसा करके। लेकिन ये कंटिन्यूस रहता है, और साल में कम से कम आपको 5 या 6 फ्लशेस आता है, मतलब फ्रूट्स देगा। जैसे कि अभी मान लीजिए कि 25 अप्रैल में फर्स्ट फ्लश निकला, उसका एक हफ्ता बाद फिर दूसरा फ्लश निकलेगा, फिर एक हफ्ता बाद तीसरा फ्लश निकलेगा, तो उस हिसाब से फ्रूट्स बढ़ते जाएगा। तो इसमें देखा गया है कि जब अगस्त सितंबर का जब फ्रूट्स है वो जल्दी होता है,
1: अच्छा,
0: उसका मतलब टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी हाई, उस समय ये जल्दी हो रहा है।
1: अच्छा,
0: तो हाँ इसमें एक बात बता दो कि फ्रूट्स फूल खिलने से लेके तोड़ने लायक तक जोरहाट कंडीशन में ये 27 डेज से आप हार्वेस्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, खा सकता है। लेकिन बहुत से अलग अलग जगह में फिर अलग अलग रिकमेंडेशन है, मतलब अगर आप विंटर को देखेगा तो फिर विंटर में क्या हो रहा था कि 30 से लेके 45 डेज तक रह जाता है, मतलब 45 डेज में पकेगा, ऐसा भी होता है। तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत काम करता है।
1: अच्छा,
0: और सबसे बड़ा बात अभी हम लोग इंडियन कंडीशन के लिए बोलेगा तो ऑलमोस्ट हम लोग का जमीन अच्छा वाला जमीन तो यूटिलाइज हो गया दूसरा क्रॉप के लिए। तो ये जो

0: ड्रैगन फ्रूट असल में मैं आपको बताना भूल गया, ये असली में कैक्टस वैरायटी है, कैक्टस प्लांट है। तो ये जो है आपका वेस्टलैंड जहां आप छोड़ के रखा हो बेकार वाला जमीन, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो उस हिसाब से ये एक एडवांटेज है। और प्लस लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये पानी जो है सोइल में जो है पानी का स्टिग्नेशन, वाटर स्टिग्नेशन जो बोलता है, मतलब बारिश के बाद बारिश रुक जाता है, पानी रुक जाता है, उसमें भी अच्छा नहीं है। तो इसको थोड़ा टॉलरेट नहीं कर पाता है, या तो टॉलरेट करने से भी फंगस वगैरह फिर अटैक कर लेता है। तो इसलिए इसको ऐसा चाहिए कि हम लोग इंग्लिश में फ्राइबल सोइल बोलता है, तो वाटर होल्डिंग इतना नहीं होना चाहिए, मतलब
1: पानी रुकना नहीं चाहिए,
0: पानी रुकना नहीं चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है। प्लस एक चीज आपको और बताना बोल के, इसको थोड़ा सा ये चाहिए, स्टेम चाहिए होता है। स्टेम बोले तो हम पहले बताया था कि ये क्रॉलिंग करता है, खुद खड़ा नहीं हो पाता है।
1: अच्छा,
0: तो किसी का सहारा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। उसके लिए आपको एक कंक्रीट स्टेम बनाने स्टिक है, मतलब ज्यादा समय के लिए। अगर आप लकड़ी डाल देगा तो वो एक दो साल में फिर सड़ जाएगा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो उससे भी हो सकता है, और किसी घर का वॉल में भी चढ़ जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो उसमें एरियल एक ये निकालता है, रूट्स निकालता है। तो एरियल रूट्स से जो है आपका ह्यूमिडिटी भी वहीं से फिर पानी जो है उससे फिर खींचता है।
1: अच्छा।
0: तो अपना शरीर का इस्तेमाल के लिए, और प्लस ये जकड़ता भी है आपका सपोर्ट को। तो इसका एरिया जैसे आपने पूछा था कि कितना एरिया में कितना ये होगा, इसको ऐसा करता है, एक हिल बोलता है हम लोग का एग्रीकल्चर टर्म में, हिल हिल बोलेगा। तो जैसे आपको हम बताया कि एक पिलर चाहिए, कंक्रीट का एक पिलर पोस्ट बनाइए, तो उसका जो चार साइड होगा ना, फोर एजेस जो होगा, उसके चारों साइड में एक एक प्लांट लगाना है। तो एक एक साइड से अपना उठते जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग वो जो पिलर को जो है आप 2 मीटर का पासला लगा सकता है। तो कम से कम, ये सबसे कम बता रहा हूँ, 2 x 3 मीटर। तो ऐसा करके आप लगा सकता है 2 x 3 मीटर, लेकिन एक पोल में फिर 4 प्लांट लगा सकता है। तो उस हिसाब से होके तो आप 1 हेक्टेयर अगर में लगाता है बोलने से, तो आपको और इस बारे में आपको यील्ड बताने में, यानी कि इसका पैदावार बताने के लिए मैं बताऊं, फर्स्ट ये क्या होता है कि कटिंग से लगाना पड़ता है। तो कटिंग से लगेगा तो आपका ये 14 मंथ से लेके 17 मंथ के अंदर फूल आना शुरू होता है, ठीक, एक ही साल में। लेकिन इसका फिर आप सीड से लगाएगा तो 3-4 साल लग जाएगा। तो आप कटिंग आप लगाएगा तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तो आपका कमर्शियल यानी कि बेचने के लिए नहीं होगा, अपना खाने के लिए होगा, मतलब दो चार फ्रूट ही लगेगा। तो आप थर्ड ईयर अनुवाद से आप इसको कमर्शियल में ला सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो थर्ड ईयर में मान लो कि 1 हेक्टेयर में लगाएगा तो आप कम से कम 12 टन मिल सकता है। तो 12 to 15 टन पर हेक्टेयर यील्ड, ये आप मान के चल सकता है। तो बहुत जल्दी रिटर्न देता है। तो अगर कमर्शियली करेगा तो ये नहीं है, लॉस नहीं है, बहुत जल्दी रिटर्न देता है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई है इसके लिए, जो पोल लगाना पड़ता है उसके लिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि दूसरे कल्टीवेशन में इस टाइप का पोल नहीं चाहिए, तो कंक्रीट लगाना पड़ता है। कंक्रीट में फिर थोड़ा रोड वगैरह भी देना पड़ता है स्टैंड होने के लिए, 5 फीट 6 फीट का हाइट बना के।
1: तो सर, वो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है कितने सालों तक फल देता है, या फिर कुछ समय के बाद उसे निकाल के अलग कर देना पड़ता है?
0: इसका अभी तक का जो रिसर्च ये बोल रहा है कि 20 ईयर्स 20 साल।
1: अच्छा।
0: आपका फ्रूट देगा।
1: अच्छा,
0: एक बार लगाने के बाद।
1: तो इससे तो पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगे ही, फिर भी लंबा अगर चलता है तो बहुत ही फायदा रहेगा, क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अच्छा, इसी के साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आपने जो स्पेसेस बताया है, अरुणाचल के जो जलवायु है और अरुणाचल के किन जगहों पर उगाने से कल्टीवेशन करने से बहुत ही फायदा दे सकता है हमारे प्रदेश को?
0: असल में जैसा बताया कि गर्म और ह्यूमिड, तो उस हिसाब से हम देखेगा तो हमारा जो हाई हिल्स में तो होगा नहीं, तो लो हिल्स और प्लेन्स जहाँ आसाम को हम लोग बाउंड्री करता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ तो आसाम को जो बाउंड्री करता है वो जमीन, उसमें तो गर्मी तो है ही, और हम लोग का यहाँ तो आपको पता ही है कि रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण तो ह्यूमिडिटी तो हाई ही रहता है एक्सेप्ट विंटर। तो अरुणाचल का जो आसाम बाउंड्री वाला है, जो प्लेन लैंड है, और लो हिल्स में जहाँ टेम्परेचर हाई है वहां पे ये होगा। मैं अभी कोई कोई जगह पे दिखा रहा है कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ काम किया था तो उसमें 29 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि ये तो एवरेज बता रहा हूँ। तो हाई ये कभी कभी 34.5, 36, 37 तक चला जाता है, तो उसमें भी ठीक है। तो हायर टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, अबव 80% जो ह्यूमिडिटी रहेगा उसमें अच्छा रहेगा। और जैसे सोइल को तो मिट्टी को तो बता ही दिया, जहाँ पे आपका सैंडी ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेगनेंट वेदर होने से प्रॉब्लम होता है।
1: जी जी
0: ये है।
1: अच्छा सर, हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है हाल ही में कि ड्रैगन फ्रूट का प्लांट काफी बाजारों में बेचा जा रहा है उगाने के लिए, लेकिन जैसे

0: आपने बताया कि कहीं में सैंडी सोइल, रेतीला मिट्टी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए उसमें, इस तरह का। तो क्या कोई फ्लावर पॉट जो गमले वगैरह में उगाया जा सकता है, एज ए कमर्शियल ही नहीं पर भी क्या सुइटेबल हो सकता है उसमें?
1: हाँ, हो सकता है। तो थोड़ा सा बड़ा साइज का लेके, लेकिन उसमें फिर एक स्टैंड चाहिए होगा, नहीं तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा तो फिर गिर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट, कहीं सपोर्ट हो घर का, वॉल का सामने रख दे तो ठीक है, चलेगा।
0: तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, और जो अरुणाचल में इसके अलावा जो मार्केट वैल्यू है, जो प्रोस्पेक्ट है आगे का, फ्यूचर किस तरह का दिखता है आपको ड्रैगन फ्रूट का, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध दिखा जा रहा है आजकल इसी समय।
1: हाँ, इसमें प्रोस्पेक्ट है जस्ट एज ए फ्रूट, उसमें भी है। और दूसरा, जैसे कि हमने बताया कि डायबिटिक 2 के लिए फायदेमंद है, कैंसर के लिए फायदेमंद है, तो हमारा अरुणाचल में तो डायबिटीज काफी है, जहाँ सुनने आया, मैं आया है, तो उसके लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि शुगर कंटेंट वाला को मना किया जाता है डॉक्टर लोग। तो उस हिसाब से हम लोग का कैपिटल कॉम्प्लेक्स आसपास में तो बिल्कुल अच्छा जमीन भी है और मार्केट भी बनता है, तो यहाँ ट्राई कर सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट का अगर ये रहेगा, स्पेशल एम्फेसिस रहेगा, तो कर सकता है। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पास अभी सिर्फ 3000 हेक्टेयर का ही कल्टीवेशन दिखा रहा है,
0: जी,
1: तो इसको बढ़ाना चाह रहा है कि 50,000 हेक्टेयर तक। तो उस हिसाब में करके इनको एनकरेज करना चाहिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है
0: जी,
1: इनको कुछ ये करना चाहिए। जैसे कोई कोई स्टेट कर रहा है, जैसे हरियाणा में कर रहा है एनकरेजमेंट, स्पेशल पैकेज है, और गुजरात में है, हमारा यहाँ भी चाहो तो कर सकता है।
0: फिलहाल नहीं है पर आगे किया जा सकता है
1: शायद, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है,
0: सरकार चाहे तो।
1: देखा नहीं है फील्ड में होते हुए, तो बस यही है जितना तक हमको खबर है, वही बता रहा।
0: अच्छा सर, हमने जलवायु की बात तो कर ली, लेकिन अब बात करते हैं जो प्रोसेस होता है, अगर कोई जो उगा रहे हो ड्रैगन फ्रूट प्लांट का, जो जैसे कि फूल लगने से पहले सीडलिंग का हो गया, आपने से बोला एक बीज से भी उगाते हैं और कटिंग करके भी उगाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है आगे का हार्वेस्टिंग तक का, उसके बारे में बताइए कि क्या क्या तरीके हैं उगाने के, या फिर दवा खाद कब किया जाना चाहिए और किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर उगा रहे हो तो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो, और हार्वेस्टिंग के वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कांटों से भी भरा होता है बहुत सारा
1: जी। तो सबसे पहला चीज, इसका कटिंग से करना चाहिए, क्योंकि सीड से करेगा तो बहुत टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, इसलिए कटिंग आप क्या करना है कि फर्स्ट लेके इसको एक पॉली बैग में डालिए, पॉली बैग में या नर्सरी में, थोड़ा सा थोड़ा शेड में रखिएगा तो अच्छा रहेगा, जल्दी निकलेगा
0: जी जी, छाया में रखिए,
1: छाया में, हम नॉट कम्प्लीटली शेड, थोड़ा मतलब पार्शियल
0: जी जी।
1: तो ऐसा हो कि 40-45 डेज में ये रूट निकलना शुरू होगा, तो रूट निकालने के बाद इसको लगाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा फील्ड में। वैसे इसका मोर्टिलिटी तो बहुत लो है, ना के बराबर है, क्योंकि हम बताया कि 0.5 टाइम, यानी कि सूखा में होने वाला है। अब जैसे पाइनएप्पल को जैसा होता है उस टाइप का ही है, तो उसको करने से आगे आप कम से कम गड्ढा खोद के ये करके रखना चाहिए एटलीस्ट 1 वीक, ताकि उसको सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य का जो रोशनी है, किरण है, उससे जो अगर वो मिट्टी खोल के रहेगा तो उसमें जो कीड़ा मकोड़ा है वो मर जाएगा ना। तो ऐसा करके उसमें आप अगर अच्छा पैदावार मिलने के लिए अराउंड 5-10 केजी जैसा मैन्यूर, मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर मिक्स कर दीजिए सोइल में, और SSP 100 ग्राम पर प्लांट हिसाब से आप मिक्स कर दीजिए। तो ऐसा करके आप लगाइए, ट्रांसप्लांट कीजिए, जैसे अभी रूटिंग जो हो गया है उसको लेके डालिए। पहले जैसे बताया, पोस्ट कंक्रीट जो पिलर पोस्ट है वो तो बनाना ही है
0: जी।
1: तो उसका साइड साइड में 4 ऐसा करके गद्दा बना के लगा लीजिए। तो ऐसा करके फिर उसके बाद अगर अरुणाचल का जो सोइल है तो अच्छा ही है, फिर भी हम लोग का रिकमेंडेशन जो है ये NPK बोलता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये 500 और 300 ग्राम पर प्लांट में आप ट्रांसप्लांट होने के बाद में आप लगाइए। तो उसके बाद ये 2 साल ऐसा लगाइए, उसके बाद इसको थोड़ा मात्रा को इम्प्रूव कीजिए NPK को। तो पहले जो 500, 300 को का जगह 800, 900 एंड 550 NPK, तो ऐसा करके डालेगा तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा।
0: अच्छा,
1: अदरवाइज नॉर्मली आप विदाउट इनऑर्गेनिक बोले तो जो हम लोग का कमर्शियली जो आता है उसको बोलता है, सो ऑर्गेनिक वाला जैसे कि हम लोग का फार्मयार्ड मैन्योर या आपका क्या बोलता है,
0: क्या हुआ?
1: हाँ, ये सब वगैरह वो सब भी कर सकता है, तो उसे उस सबसे भी निकलेगा। हाँ, साइज में थोड़ा इधर उधर होता है, कभी छोटा बड़ा साइज हो जाता है। तो ये है। उसके बाद आप इसको जब ये बढ़ने लगेगा तो आप इसको पिलर पोस्ट जो होता है कंक्रीट का जो बनाएगा उसमें बांध के जाना है। अगर एक बार कैच हो गया तो कैच होकर रह जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन शुरू में क्या होता है कि कोई कोई लुढ़क जाता है बाहर, मतलब इधर उधर हो जाता है, तो उसको बांध के रखना है। और प्लस इसमें बहुत सा ब्रांचेस निकलता है, नीचे में इतना ब्रांचेस निकालने नहीं देना है क्योंकि ऑपरेशन में थोड़ा तकलीफ होता है, तो इसको काट के निकालते जाना है और ऊपर जाने देना है। तो पिलर पोस्ट का ऊपर में जो है एक सर्कल देना है, वो सर्कल का अंदर घुसा के उसको उल्टा तरफ से निकाल दे देना।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो ऐसा लगेगा कि एक पेड़ का ऊपर से ऐसा उल्टा लटक के जो है आपको फ्रूट्स हार्वेस्ट करने में भी इजी होता है। तो उस तरीके से करके कटिंग भी करते रहना है, और जैसे कि हार्वेस्टिंग फुल राइपनिंग, फुल पकने, पूरा पकने के बाद, यानी कि पूरा पिंक पिंक होने के बाद हार्वेस्ट करेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है।
0: अच्छा।
1: तो पूरा पिंक होने के बाद हार्वेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा इसका आप क्या बोलेगा स्टेम को भी काटना पड़ता है, अदरवाइज फ्रूट्स में इंजर हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो हम लोग का जो एग्रीकल्चर में साथ ग्राफ्टिंग बाइंडिंग करने के लिए पकड़ता है ना सिग्नेचर बोल के खींची जी सब जो होता है, तो वो लेके साइड साइड के काट के निकालने से ज्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज फ्रूट्स को अगर हम लोग संतरा को तोड़ता है हाथ से तोड़ने की कोशिश करेगा तो फ्रूट्स में इंजर हो जाता है। तो ये है एक सावधानी बरतने का। उसमें काटा जरूर होता है तो काटा से थोड़ा बच के रहना है
0: जी।
1: तो उसके बाद इसका, हाँ, और एक इसमें एक बहुत बड़ा एक डिमेरिट है, इसका कीपिंग क्वालिटी जो है बहुत लो है।
0: अच्छा।
1: यानी कि आप, हम लोग शेल्फ लाइफ बोलता है, शेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो आप ऑफकोर्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रिज में तो रहेगा एक महीना दो महीना, लेकिन आप बाहर रखेगा जो अराउंड आपका रूम टेम्परेचर अगर एवरेज 28-29 रहा तो आप 6 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, तो खराब हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा समय रख सकता है।
0: अच्छा अच्छा सर, ये जो आपने मैन्योरिंग के बारे में बताया ही है, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि ये कम पानी लेने वाला पौधा है, फल है, तो कब कब पानी दे जब ये उगा रहे हो तो?
1: हाँ, प्लांटिंग करने के साथ साथ तो करना ही पड़ेगा, प्लांटिंग करने के साथ साथ पानी दीजिए, उसके बाद 4-5 डेज गैप के बाद दीजिए। और ऐसा करके जब आप लगेगा कि ये हो गया, रूटिंग हो गया है, और ये रूटिंग होने के बाद ये सेगमेंट निकालने शुरू हो जाता है, मतलब ब्रांच निकालना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद तो इतना जरूरी नहीं है। अगर बहुत सूखा, ज्यादा ही सूखा लगेगा तो दे सकता है, अदरवाइज रेनफेड अरुणाचल कंडीशन में या नॉर्थ ईस्ट कंडीशन में ये रेनफेड ही चलेगा, उसमें कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं
0: जी। पानी की मात्रा भी अगर कम हो तो कोई बात नहीं?
1: नहीं, पानी की मात्रा भी कम हो तो कोई बात नहीं।
0: अच्छा। सुबह को दे, शाम को दे, कब दे,
1: इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। सुबह और शाम को ही दे दीजिए। अच्छा। अगर ये होता है तो
0: ठीक है सर। इसके अलावा अब क्योंकि एक नया ही विषय है ड्रैगन फ्रूट उगाने का जो बात है, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए इसको और प्रमोट करने के लिए कि हमारे प्रदेश में भी अच्छा से उगाया जा सके?
1: हाँ, इसको प्रमोट करने के लिए इसका वैल्यू बताना चाहिए कि ये फ्रूट्स का वैल्यू ये है और कल्टीवेशन में इजी है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन आप अपना किचन गार्डन में लगाएंगे तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप टेम्पररीली 4-5 या 10-12 पेड़ लगाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लकड़ी का या बम्बू का भी सपोर्ट देके भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर खराब हो गए तो फिर नेक्स्ट ईयर लगाएगा, ये हो सकता है। और गवर्नमेंट का तरफ से, हाँ, अगर करना है तो इसका फूड वैल्यू का बारे में, इसका हेल्थ में जो हेल्प करता है, हेल्थ प्रॉब्लम को जो मदद कर रहा है, इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये करना है, बताना चाहिए, बता सकता है। वैसे हम लोग आईसीआर का तरफ से कुछ कुछ जगह पे देके लगा रहा है, आईसीआर जो KBK है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो हम लोग लॉन्गडिंग में भी लगाया और एक दो जगह बसार में भी है, तो हम लोग जस्ट लगा के देख रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग वाला एक पॉइंट हम लोग रिसर्च फील्ड में देखा है कि ये लाइट सप्लीमेंट करेगा तो फ्रूटिंग हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन में भी। हम जैसे बताया कि अप्रैल में जोरहाट में फ्लावरिंग शुरू होता है और नवंबर दिसंबर तक फ्रूट्स रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये ट्राई किया है कि लाइट का मात्रा को बढ़ा के, जैसे शाम को आपका यहाँ पे हम लोग को अभी 4:30-5 बजे जो है धूप डल जाता है तो लाइट नहीं रहता है, उसमें आप फ्लोरेसेंस लाइट एक्स्ट्रा दे के विंटर में जो है फ्लावरिंग करा सकते। और ताइवान में एक काम हुआ था, तो इन लोग मिडनाइट फ्लशिंग करके, जैसे रात का 10 बजे और 2 बजे के बीच में फ्लशिंग करके, मतलब फ्लैश लाइट दे के फ्लावर इनिशिएट कराया, यानी कि उस हिसाब से तो होल ईयर राउंड आप कल्टीवेट भी कर सकेगा।
0: अच्छा, अच्छा।
1: ऐसा लगता है।
0: अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, ब्रीफ में जानना चाहूंगी कि जो आप तो इसी ICAR में काम करते ही हैं, तो आपकी नजर में ड्रैगन फ्रूट के अलावा आगे के भविष्य में कौन कौन से जो नए फल या फूल है?

0: जो बहुत ही अच्छा मार्केट में आ सकता है, बाद में फ्यूचर उसका बहुत ही अच्छा है आगे चलकर।
1: हाँ वैसे तो बहुत रहता है, तो फिर भी मैं इस लाइन पे जो काम कर रहा था, जो ड्रैगन फ्रूट्स में कैक्टस में काम कर रहा हूँ, तो इसी लाइन का थोड़ा बता दूं।
0: जी
1: ये ड्रैगन फ्रूट टाइप का एक आता है ठंडा जगह के लिए, प्रिकली पियर्स बोल के।
0: अच्छा,
1: प्रिकली पियर्स आ सकता है हमारा यहाँ, तो मैक्सिमम ठंडा वाला इलाका है
0: जी,
1: तो उसमें इसको ट्राई कर सकता है। हाँ, ड्रैगन फ्रूट का बहुत सा नाम है, आपको जो आम फार्मर से उसको जानना चाहिए
0: जी।
1: इसका नाम जो है नाइट क्वीन भी बोला जाता है और पिताया भी बोलता है अलग अलग कंट्री में, और
0: अच्छा, अच्छा।
1: पिताहाया भी बोलता है, और इंडियन वालों में भी कुछ नाम दिया है गुजरात में।
0: अच्छा।
1: कमलम करके, जो जैसे फ्रूट्स का ये निकलता है ना फूल, हम लोग का लोटस
0: कमल जैसा होता है,
1: कमल जैसा होता है करके कमलम करके भी नाम दिया है। तो अलग अलग नाम है ये। और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, इसका जो फूल जो है बट बोलता है, पंखुड़ी तो निकालता है अप्रैल से स्टार्टिंग होता है, तो उसके बाद 15-18 डेज के बाद पंखुड़ी खुल जाता है। लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब चीज है कि ये फूल खिलता है सिर्फ रात को, शाम का 4-5 बजे, यानी कि धूप ढलने का साथ ये खुलना शुरू होता है
0: जी।
1: तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मतलब 12 बजे से पहले या उसके आसपास ये जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, मतलब सिर्फ एक रात के लिए होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये है मतलब रात को खिलता है सिर्फ एक रात। आप दूसरा फूल को तो देखते होंगे कि हफ्ता दो हफ्ता फूल बन के रहता है
0: जी। तो सर, हम आपने कार्यक्रम कृषि जगत कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से कोई संदेश दें।
1: संदेश यही रहेगा कि आप नौकरी भी करता हो या कंट्रेक्टरी भी करता, कुछ भी करता हो, फार्मिंग कीजिए, आपका हेल्थ को भी बनाए रखेगा, और प्लस आपका जो इनऑर्गेनिक जो मेडिसिन फर्टिलाइजर का साथ आप बाहर से आने वाला को खाने के बजाय अपना किचन गार्डन या अपना खुद उगा के हाइजीनिक ऑर्गेनिकली जो प्रोड्यूस किया हुआ खाइए, आपका तन मन और आपका सोसाइटी मस्त रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गरीब बागरा जी।
1: थैंक यू।
0: तो ये थे गरीब बागरा जी, जो कि है असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईकार अरुणाचल प्रदेश सेंटर बासार में, और इन्होंने हमें ड्रैगन फ्रूट इसके कल्टीवेशन जो अरुणाचल में कर सकते हैं उस पर जानकारी दी। तो इसी के साथ आज की कृषि जगत में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि केन्यूम आंगो को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मीडियनिफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:37 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:44 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम येदुन लेरिम के अंतर्गत आप सुनिए लामा दांगा और साथियों से छुकी चुंदर। 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिन्दी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनिएगा एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल के छात्र तेंजिन जिगतिन नामडुल की से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक होगा नेचर्स मैजिक। शाम के 7:11 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए फिल्म आ अब लौट चले से उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, अभिजीत, शबीर कुमार, विजेता और साथियों से चंद गीत। आज शाम के 7:25 पर साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक के अंतर्गत आप सुन सकेंगे हिंदी में एक वार्ता। विषय होंगे अनुशासित विद्यार्थी, मोबाइल फोन के सदुपयोग और नशा मुक्त जीवन की ओर। वार्ताकार होंगे सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवंग की पीजीटी हिंदी श्रीमती लोपसंग वांगमू। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम के 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर सुनिएगा फिल्म 10 से शंकर महादेवन, उदित नारायण और साथियों से एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 बजे का वक्त रहेगा। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनिए न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारे सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ। 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार से हिंदी भक्ति गीत। 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म आई हैड लव स्टोरी से श्रिया घोषाल और सोना महापात्रा, फिल्म ऊंचाई से नकाश अजीज, फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान और फिल्म ओम शांति ओम से के स्वरों में चंद नगमे। कल दोपहर के 3:50 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म स्त्री 2 से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर, फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर, फिल्म सुरमा से

दिलजीत फिल्म खेल खेल में से विशाल मिश्रा और जरा एस खान, फिल्म क्या यही प्यार है से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो, फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो, फिल्म फिदा से उदित नारायण और अलका याग्निक, और फिल्म बागी फोर से जोश ब्रार और परंपरा टंडन की आवाजों में चंद नगमे। कल शाम के 4:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल शाम के 5:40 पर आप सुनिए नंगछे कालुप। कल शाम के 6:00 लेरिम सेना। 6:20 पर आप सुनिएगा बोध भक्ति गीत। कल शाम के 7:10 पर आप सुन सकेंगे फोन पर लिए गए फरमाशी गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम के 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज कल रात के ठीक 8:00 सुनिएगा। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्म गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि के ठीक 9:00 सुनिए न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम जरो का अब यही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा मनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा

0: तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Defense Minister Rajnath Singh said that the Indian Navy is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today launched a new set of initiatives under the Pragati 50 to develop a model city framework for 50 cities of economic, cultural, heritage, pilgrimage, tourism and administrative significance. Speaking at the launch ceremony, the Union Minister emphasized that the initiative aims to drive visible improvements in urban cleanliness, solid waste management, used water management, sanitation and citizen participation through a structured framework of monitoring and review within a defined time frame. As part of Swachhta Hi Seva 2026, Union Minister Manohar Lal also inaugurated a Reduce, Reuse and Recycle RRR Centre at Sankalp Bhavan, New Delhi. The initiative will promote sustainable consumption, reuse, resource recovery and circularity in government workplaces. The second meeting of the Joint Parliamentary Committee, JPC, examining the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was held at Parliament Annex in New Delhi. The committee has been tasked with examining the provisions of the bill and submitting its report to Parliament by the last day of the first week of

0: the Winter Session 2026. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multi-dimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems, addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi today. Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Urad and Masoor at minimum support price, with arrangements to ensure payments are made within 48 hours. Indian High Commissioner Shri Dinesh Trivedi today held a courtesy meeting with Bangladesh's State Minister for Foreign Affairs, Mr. Humayun Kabir, in Dhaka. The High Commissioner congratulated Mr. Kabir on assuming charge as State Minister. During the meeting, the two sides discussed continued cooperation between India and Bangladesh with a focus on mutually beneficial outcomes for the people of both countries. Indian Navy's frontline destroyer INS Ranvijay made a port call at Oman Salalah as part of an ongoing deployment, underscoring enduring friendship and maritime ties between India and Oman. During the port call, professional engagements were witnessed between INS Ranvijay and Oman's RNOV Saad, and a PASEX exercise between the Indian Navy and the Royal Navy of Oman was conducted off Salalah. Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. And in the Asian Games 2026, India today won women's 4 into 400 meters relay gold, clocking 3 minutes 29.69 seconds at Nagoya in Japan. India also bagged bronze in men's 4x400 meter relay. Earlier, Nirud Handa made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver in the women's trap team event with Ashima Ehlawat and Manisha Kier. Gulveer Singh bagged the bronze in the men's 5,000 meter final. This is Gulveer's third medal of the games after he clinched silver in both the men's 10,000 and 1500 meter earlier in the competition. Pooja Singh also bagged the bronze in women's high jump today. India has moved up to the 10th place in the 2026 Asian Games standings, bringing its total medal tally to 52. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम के चौथी कक्षा की छात्र तेंजिन जिगतिन नामडुल की से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक है नेचर्स मैजिक।
2: तशी दिलेक, माय नेम इज तेंजिन जिगदन नमलकी। आई रीड इन क्लास 4 एंड आई एम फ्रॉम एलडी स्कॉलर्स होम तवांग। टुडे आई एम हियर टू रिसाइट अ पोम एंड द टाइटल ऑफ माय पोम इज नेचर्स मैजिक। द सन कम्स अप, द स्काई टर्न्स ब्लू, द बर्ड्स ऑल सिंग अ सॉन्ग सो ट्रू, द फ्लावर्स ब्लूम, द रिवर्स फ्लो, द जेंटल विंड्स बिगिन टू ब्लो, द ट्रीज स्टैंड टॉल विद आर्म्स सो वाइड, दे गिव अस शेड एंड फ्रूट्स इनसाइड, द बटरफ्लाइज डांस इन द एयर विद कलर्स ब्राइट बियॉन्ड कंपेयर, द माउंटेन्स हाई, द वैलीज डीप, द स्टार्स दैट ट्विंकल व्हाइल वी स्लीप, नेचर इज अ गिफ्ट सो ग्रैंड, लेट्स प्रोटेक्ट इट हैंड इन हैंड, द बजिंग बीज, द बजिंग साउंड, द एंट्स दैट मार्च अलोंग द ग्राउंड, ईच little creature has its place in nature, warm and kind embrace. So plant a tree, don't waste the rain, keep the earth happy, free from pain, for nature smiles when we all care, it gives us life, it's always fair. Thank you.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलडी स्कॉलर्स होम की चौथी कक्षा की छात्र तेंजिन जिगदेन नामडुल की से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक था नेचर्स मैजिक। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, समय शाम के 7:11 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही

फिल्म से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए फिल्म आ अब लौट चली से चंद नगमे। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। गीत समीर के है व संगीत नदीम श्रवण का।

0: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। नदीम शवन द्वारा संगीत निर्देशन में समीर के लिखे इस गीत को आवाज दे रहे हैं कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शबीर कुमार और साथियों ने।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यही पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक। अपनी धरती अपने लोक के अंतर्गत आप सुनिए हिंदी में एक वार्ता। विषय है अनुसूचित विद्यार्थी अनुशासन, विद्यार्थी मोबाइल का सदुपयोग और नशा मुक्त की जीवन की ओर। वार्ताकार है सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवांग की पीजीटी हिंदी श्रीमती लोबसंग वांगमो।
1: आकाशवाणी तवांग के सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार। हमारे आज की वार्ता का विषय है अनुशासित विद्यार्थी मोबाइल का सदुपयोग एवं नशा मुक्त जीवन की ओर। तो दोस्तों, यह विषय केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता, शिक्षकों और समाज के प्रति व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल के समाज और देश का निर्माण करेंगे। विद्यार्थी जीवन केवल किताबें पढ़ने, परीक्षा देने और अच्छे अंक प्राप्त करने का समय नहीं है। यह जीवन के मूल्यों, आदतों, सोच और व्यक्तित्व को आकार देने का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। इसी उम्र में हम यह

कहते हैं कि अपने समय का उपयोग कैसे करेंगे, किन लोगों की संगति करेंगे, तकनीकी का इस्तेमाल किस उद्देश्य से करेंगे और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे। आज हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक और मोबाइल फोन और डिजिटल तकनीकी का बढ़ता प्रभाव और दूसरी ओर नशे तथा नशीली पदार्थों का खतरा। इन दोनों के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच है और वो है अनुशासन। तो आइए आज हम पहले बात करते हैं कि आखिर अनुशासन क्या है, विद्यार्थी जीवन में इसका क्या महत्व है। आज के इस दौर में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गलत संगति, नशे और साथियों के दबाव जैसी चुनौतियों के बीच एक विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को कैसे बनाए रख सकते हैं। जब हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर कुछ नियम आते हैं, समय पर स्कूल जाना, यूनिफॉर्म पहनना, क्रय कार्य करना, शिक्षकों का सम्मान करना और विद्यालय के नियमों का पालन करना। अक्सर हम अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना समझते हैं, लेकिन वास्तव में अनुशासन का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि क्या करना है, कब करना है और क्या नहीं करना है। एक अनुशासित विद्यार्थी समय पर उठता है, पढ़ाई के लिए नियमित समय निर्धारित करता है और विद्यालय के नियमों का पालन करता है, शिक्षकों और माता पिता का सम्मान करता है तथा अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति जिम्मेदार भी रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुशासन केवल तब नहीं होना चाहिए जब हमें कोई देख नहीं रहा हो। सच्चा अनुशासन वह है जो हम अकेले में भी निभाते हैं। जब कमरे में कोई नहीं है और मोबाइल हमारे हाथ में है तब हम क्या करते हैं? जब कोई नशे के लिए उकसाता है तब हमारे निर्णय क्या होता है? जब परीक्षा नजदीक है और मनोरंजन का आकर्षण सामने है तब हम किसे प्राथमिकता देते हैं? यही हमारे आत्म अनुशासन की परीक्षा है। दोस्तों, आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल के माध्यम से हम देश दुनिया की खबरें जान सकते हैं, ऑनलाइन क्लासों में भाग ले सकते हैं, शैक्षणिक वीडियो देख सकते हैं, डिजिटल पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कई भाषाएं भी सीख सकते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार भी हम कर सकते हैं। इस अर्थ में मोबाइल फोन एक शक्तिशाली शैक्षणिक एवं संचार साधन हो सकता है। लेकिन प्रश्न यहाँ आप ये उठता है कि क्या मोबाइल हमारा साधन या हम मोबाइल के साधन बनते जा रहे हैं? यहीं से समस्या शुरू होती है। यदि मोबाइल का उपयोग पढ़ाई, जानकारी, रचनात्मकता और आवश्यकता संचार के लिए किए जाए तो यह उपयोगी है, लेकिन यदि हम बिना उद्देश्य घंटों सोशल मीडिया देखते रहें, लगातार वीडियो देखते रहें, गेम्स में समय बिताते रहें या बार बार फोन की स्क्रीन चेक करते रहें तो वही मोबाइल हमारी पढ़ाई, नींद, स्वास्थ्य और एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए समस्या केवल मोबाइल फोन में नहीं है, समस्या उसके अनियंत्रित और असंतुलित उपयोग में हो सकते हैं। मोबाइल के सदुपयोग के कुछ सरल नियम भी है। दोस्तों, मोबाइल का उपयोग बंद करना हर किसी के लिए संभव या आवश्यक नहीं है। जरूरत है मोबाइल का समझदारी से उपयोग करने की। सबसे पहले नियम है, उद्देश्य को हम तय करें। मोबाइल उठाने से पहले खुद से पूछिए, मैं फोन क्यों उठा रहा हूँ? अगर उत्तर है पढ़ाई, जानकारी या आवश्यक बातचीत तो इसका उपयोग कीजिए। लेकिन यदि कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है और हम केवल आदतन फोन उठा रहे हैं तो हमें सावधान होना चाहिए। दूसरा नियम है, समय सीमा हम निर्धारित करें। पढ़ाई के समय मोबाइल का साइलेंट या दूर रखना अच्छी आदत हो सकती है। तीसरा, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि अगर देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत हमारी नींद और अगले दिन के दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। चौथा, सोशल मीडिया को जीवन का केंद्र हम कभी न बनाएं। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज वास्तविक जीवन का प्रतिबिंब नहीं होती, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। और पांचवा, मोबाइल को ज्ञान का माध्यम

नियम बनाइए केवल मनोरंजन का नहीं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई पुस्तकें, शैक्षणिक सामग्री, भाषा सीखने का कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक सामग्री का उपयोग कीजिए। याद रखिए, मोबाइल आपकी जेब में होना चाहिए, आपकी जिंदगी पर हावी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुशासन और समय प्रबंधन पर। तो दोस्तों, अनुशासन का सबसे बड़ा संबंध समय से है। समय एक ऐसी संपत्ति है जिसे न खरीदा जा सकता है और न वापस लाया जा सकता है। एक दिन में हर विद्यार्थी को समान 24 घंटे मिलते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। आप अपने दिन की एक सरल योजना बना सकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए निश्चित समय, खेल और व्यायाम के लिए समय, परिवार के लिए समय, आराम और नींद के लिए पर्याप्त समय, मोबाइल और मनोरंजन के लिए सीमित समय। जब जीवन में एक संतुलित दिनचर्या होती है तो हमें गलत आदतों के लिए कम अवसर मिलता है। व्यस्त रहना अनुशासन नहीं है, सही काम के लिए सही समय निर्धारित करना ही अनुशासन है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के विषय के तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की, यानी नशा मुक्त जीवन। दोस्तों, नशे की शुरुआत हमेशा बड़ी समस्या के रूप में नहीं होती, कई बार इसकी शुरुआत जिज्ञासा से भी हो सकती है। कोई मित्र कह सकता है एक बार करके देखो, कोई कह सकता है कुछ नहीं होगा, या सब लोग करते हैं। यही पर एक विद्यार्थी का निर्णय उसके भविष्य की दिशा को तय कर सकता है। इसलिए नशे से बचाव का सबसे मजबूत कदम है पहली बार ही स्पष्ट रूप से नहीं कहना। यदि कोई आपको नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए प्रेरित करता है तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं, नहीं, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं अपने स्वास्थ्य और भविष्य के साथ समझौता नहीं करना चाहता, मैं नशा मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ। याद रखिए, ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की निशानी है। बुरी संगति से सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में मित्रों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छे मित्र हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें पढ़ाई, खेल, रचनात्मक गतिविधियों और अच्छे कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि कोई मित्र हमें गलत आदतों, हिंसा, नशे या अन्य हानिकारक गतिविधियों की ओर ले जाना चाहता है तो हमें सावधान रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हर गलती करने वाले व्यक्ति से घृणा करना चाहिए, बल्कि हमें गलत व्यवहार से दूरी बनानी चाहिए और आवश्यकता होने पर किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए। माता पिता, शिक्षक या परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य से बात करना बिल्कुल सही कदम है। समस्या को छिपाने के बजाय समस्या पर सहायता मांगना साहस की बात है। कई विद्यार्थी पढ़ाई, परीक्षा, पारिवारिक परिस्थितियों, मित्रता, भविष्य या अन्य कारणों से तनाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे समय में कुछ गलत आदतों को तनाव कम करने का रास्ता समझ लेते हैं, लेकिन हमें स्वस्थ विकल्प चुनने चाहिए। जब तनाव महसूस हो, थोड़ी देर टहल ले, व्यायाम करें, खेले, संगीत सुने, किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें, अपनी भावनाओं को लिखें, ध्यान लगाएं, और यदि समस्या गंभीर लग रही हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य पेशेवर से सहायता लें। समस्या से भागना समाधान नहीं है, समस्या को समझना और सही सहायता लेना समाधान की दिशा में कदम है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि मोबाइल का नशे से क्या संबंध है। दोनों बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में आत्मनियंत्रण और सही निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण हो सकती है। मोबाइल का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग हमें समय की बर्बादी और अस्वस्थ डिजिटल आदतों की ओर ले जा सकता है। वही नशीले पदार्थों का सेवन गंभीर स्वास्थ्य, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। इसलिए दोनों मामलों में हमें एक ही मूल सिद्धांत याद रखना चाहिए, जो चीज हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए उसे अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें।
यही अनुशासन।

दर्शन है। तो आखिर एक अनुशासित विद्यार्थी कैसा होता है? वह केवल अच्छे अंक पाने वाला विद्यार्थी नहीं होता। एक अनुशासित विद्यार्थी अपने समय का सम्मान करता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, मोबाइल का विवेकपूर्ण उपयोग करता है, बुरी संगति से सावधान रहता है, नशे से स्पष्ट दूरी रखता है, गलती होने पर उसे स्वीकार करता है, आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगता है, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करता है और सबसे महत्वपूर्ण वह अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं लेने की कोशिश करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें एक ही दिन में बहुत बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाइए, आज से तय कीजिए, मैं अपने मोबाइल का उपयोग उद्देश्यपूर्ण तरीके से करूंगा, मैं पढ़ाई के समय अनावश्यक फोन से दूरी रखूंगा, मैं अपनी नींद और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं नशीली पदार्थों से दूर रहूंगा, मैं गलत दबाव में आकर

0: बहुत बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाइए, आज से तय कीजिए, मैं अपने मोबाइल का उपयोग उद्देश्यपूर्ण तरीके से करूंगा, मैं पढ़ाई के समय अनावश्यक फोन से दूरी रखूंगा, मैं अपनी नींद और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं नशीली पदार्थों से दूर रहूंगा, मैं गलत दबाव में आकर निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपने लक्ष्य को याद रखूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने जीवन की दिशा तय करने की जिम्मेदारी स्वयं निभाऊंगा। तो आइए इस कार्यक्रम के अंत में हम पांच छोटे छोटे महत्वपूर्ण संकल्प लें। पहला संकल्प, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा और नियमित दिनचर्या अपनाऊंगा। दूसरा संकल्प, मैं मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित तथा रचनात्मक रूप से करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से दूर रहूंगा और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करूंगा। चौथा संकल्प, मैं गलत मित्र संगति या दबाव में आकर अपने भविष्य से समझौता नहीं करूंगा। पांचवा संकल्प, जब भी मुझे किसी समस्या, तनाव या गलत आदत से जूझने की कठिनाई होगी, मैं किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सहायता मांगूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन एक ऐसा अवसर है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। एक अनुशासित विद्यार्थी के पास केवल किताबों का ज्ञान नहीं होता, बल्कि उसके पास सही निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। मोबाइल से डरने की जरूरत नहीं है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने की जरूरत है। नशे के सामने समझौता करने की जरूरत नहीं है, उसे दूरी बनाने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने की जरूरत है। और अनुशासन कोई बोझ नहीं है, अनुशासन वह शक्ति है जो हमें अपनी इच्छाओं और आदतों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप दिशा देने की मदद करती है। इसलिए याद रखिए, मोबाइल को अपना साधन बनाइए, मालिक नहीं। मित्रों की संगति सोच समझ कर चुनिए, नशे को जीवन में प्रवेश करने का अवसर मत दीजिए और अपने समय, अपने शरीर, अपने विचार और अपने भविष्य का सम्मान कीजिए, क्योंकि आज का अनुशासित विद्यार्थी ही कल का जिम्मेदार नागरिक बनता है। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, अनुशासन अपनाइए, तकनीक का सदुपयोग कीजिए, नशे से दूर रहिए और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवंग के पीजीटी हिंदी श्रीमती लोबसंग वांगमो से अनुशासित विद्यार्थी, मोबाइल का सदुपयोग और नशा मुक्त जीवन की ओर विषय पर वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए श्रोताओ, आनंद लेते हैं एक गीत का, फिल्म मोहब्बत से। विनोद राठौड़ और सोनू निगम की आवाजों में, गीत समीर के है व संगीत नदीम श्रवण का।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। पूर्व हाई कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने आज लोकभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाट केटी परनायक से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तथा प्राकृतिक आपदाओं और चिकित्सकीय आपात स्थितियों के दौरान सहायता जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए पूर्व वायु कमान की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, चिकित्सकीय आपात स्थितियों और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों के दौरान वायु कमान द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार प्रदर्शित किया है और इसे दूर दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बनाई है, जहां समय पर मिलने वाली सहायता महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की क्षमता को देखते हुए राज्यपाल ने वायुसेना से करियर जागरूकता कार्यक्रमों, एनसीसी से जुड़ाव एयर शो तथा शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से युवाओं तक अपनी पहुंच और अधिक बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज दोहराया कि सरकार सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP को व्यवहार्यता चरण से आगे बढ़ाने में जबरदस्ती नहीं कर रही है। हालांकि सरकार चाहती है कि परियोजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट यानी PFR पूरी हो, ताकि यह निर्णय तथ्यात्मक और तकनीकी जानकारी के आधार पर लिया जा सके कि प्रस्तावित परियोजना को तकनीकी रूप से बनाया जा सकता है या नहीं, इसे कहां बनाया जा सकता है और किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। बोलिंग में सियांग जिले के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि PFR के बाद विशेषज्ञ और निर्धारित करते हैं कि परियोजना का निर्माण संभव नहीं होता है तो उसके बाद कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में केवल 3 महीने लगने की उम्मीद है, जिसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी शामिल है। इसके बाद प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता, स्थान और तकनीकी मानकों को लेकर अधिक स्पष्टता सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि परियोजना व्यवहार्यता चरण से आगे बढ़ती है तो प्रभावित समुदायों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारी और कर्मचारियों से परियोजना को पूरी तरह से समझने तथा लोगों के बीच तथ्य आधारित और सूचित चर्चा को बढ़ावा देने में सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि गलत सूचना या अनिश्चितता सार्वजनिक विमर्श पर हावी न हो सके। गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग ने आज असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्य सीमा तथा

0: राज्यों की 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा किए जा रहे संयुक्त क्षेत्रीय दौरे की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान गृहमंत्री ने सभी समिति अध्यक्षों से अपने असम के समकक्षों के साथ करीबी समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्रीय दौरे में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने संवाद और आपसी समझ की भावना के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के शीघ्र सौहार्दपूर्ण और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान के लिए निरंतर संपर्क तथा रचनात्मक राजनीतिक सहमति का आश्वासन भी दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत शिलांग जिले के 4 लाभार्थियों को ट्रैक्टर वितरित किए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोना ने कहा है कि चुका और मनीगांव ब्लॉक्स के लाभार्थियों को कुल 44 लाख रुपए की परियोजना लागत वाले ट्रैक्टर प्रदान किए गए हैं। इन पर सरकार की ओर से 45% सब्सिडी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानी उत्पादकों के लिए आधुनिक कृषि मशीनरी तक पहुंच महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। तवांग जिला प्रशासन ने आज डीसी कार्यालय परिसर में सेवा संकल्प अभियान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में विभिन्न सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया ताकि आम लोगों को सुविधाजनक तरीके से इनका लाभ सुनिश्चित हो सके। शिविर में गांव बूढ़ा, पंचायती राज संस्था के सदस्य, बाजार सचिव, ग्रामीण तथा आम जनता के सक्रिय रूप से भाग लिया और इसी तरह के सेवा संकल्प अभियान के शिविर दापोरिजो, पासीघाट और ईटानगर स्थित आईजी पार्क में भी आयोजित किए गए। और वेस्ट कमेंग जिले के रूपा स्थित आंसू ज्ञापन क्षेत्र स्टेडियम को प्रतिष्ठित फीफा क्वालिटी फील्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह मान्यता अरुणाचल प्रदेश के लिए खेल अवसंरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसे राज्य में खेल सुविधाओं को लगातार मजबूत किए जाने और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसरों को तैयार होना दर्शाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani Itanagar, the news read by Priya Badu. Air Officer Commanding in Chief Eastern Air Command Air Marshal Inderpal Singh Walia called on the Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General K.T. Parnaik, retired at Lok Bhavan, Itanagar today. They discussed national security, advanced landing grounds and assistance during natural calamities and medical emergencies. The Governor commended the Eastern Air Command for its steadfast support to the people of Arunachal Pradesh, particularly during natural disasters, medical emergencies and other critical situations. He said that the Indian Air Force has consistently demonstrated its commitment to public service by reaching remote and inaccessible areas where timely assistance can make a significant difference. Recognizing the potential of Arunachal Pradesh youth, the governor encouraged the Air Force to expand outreach initiatives through career awareness programs, NCC engagement, air displays and educational visits. Chief Minister Pema Khandu today reiterated that the government is not seeking to rush the Siang Upper Multipurpose Project beyond the feasibility stage, but wants the preliminary feasibility report completed so that an informed decision could be taken on whether, where and how the proposed structure could technically be developed. If the experts determine after the PFR that the project cannot be built, there will be no further process, he said. Addressing an interaction program with government officers and officials of Siang District at Boling, the Chief Minister said the PFR is expected to take only 3 months, covering November, December and January, after which there will be greater clarity on the feasibility, location and technical parameters of the proposed project. The Chief Minister assured that the government would undertake extensive consultation with affected communities if the project proceeds beyond the feasibility stage. In the meantime, the Chief Minister has urged the officers and officials to understand the project comprehensively and help facilitate informed discussion rather than allowing misinformation or uncertainty to dominate the public discourse. Home Minister Mama Natung today chaired a meeting to review the Assam-Arunachal Pradesh interstate boundary and progress of joint field visits by the 12 regional committees of both states. During the meeting, the minister urged all committee chairmen to expedite field visits in close coordination with their Assam counterparts with a spirit of dialogue and mutual understanding. He emphasized on sustained engagement and constructive political consensus for an early, amicable and mutually acceptable resolution, strengthening peace, harmony and cordial relations along the interstate boundary. The meeting was attended by Commissioner Home Nyali Atte, senior officers of the Home and ISBA departments and others. Minister for Education P.D. Sona today distributed tractors to four beneficiaries.

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। डीजी श्रोताओ, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा पसंद किए गए चंद फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गांधी चौक बर्मेर राजस्थान से। आप हैं बबलीश पनवर, दैनी पनवर और मनीष पनवर। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म दाग से यह गीत, गायिका लता मंगेशकर के स्वर में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यालीराल ने और इस गीत के बोल है जब भी जी चाहे।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत के लिए हमें फरमाइश किया है चंडीगढ़ से, आप है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, और मुरादाबाद विल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप है मुकेश केशव, शीतल केशव, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म प्रेम नगर से यह गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी द्वारा शब्दबद्ध पर इसे संगीत से सवारा है एस टी बर्मन ने, और इस गीत के बोल है ठंडी हवाओं

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, पजूनिया जलौन उत्तर प्रदेश से आप है सितेंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श शर्तक और अलौकिक चौंसलिया और जनकपुरी सरहनपुर से आप हैं।

जॉन डिकास्ट्रो, पर्ल डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो और विलिस डिकास्ट्रो। आप सबकी पसंद पर आने लेते हैं यह गीत फिल्म पकीजा से। यह गीत कैफी अजमी द्वारा संगीत निर्देशन पर लता मंगेशकर के स्वर में, और इस गीत को लिखा है गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत के बोल है चलते चलते यू ही कोई।

श्रोताओं, अगला गीत फरमाइश की है लुखर थकरन वाला फिरोजपुर पंजाब से आप है स्वयं सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और निमानाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसबीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं फिल्म बेताब से यह गीत शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी द्वारा लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और इस गीत के बोल है जब हम जवा होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, आप दोनों की पसंद पर।

पेश है फिल्म साथ साथ है से यह गीत, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जावेद अख्तर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने, और इस गीत के बोल है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना न भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 सुनिए न्यूज़ @9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने जीता स्वर्ण पदक, महिलाओं की ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में रचा इतिहास। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने हासिल किया स्वर्ण पदक, गुलवीर सिंह ने लगाई मेडल की हैट्रिक। 5000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक, पूजा ने भी हाई जंप में कांस्य पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में अंकुश ने फाइनल में जगह बनाई, नरेंद्र ने जीता कांस्य पदक। एशियन गेम्स क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश के कारण रद्द, सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका और पाकिस्तान बांग्लादेश आमने सामने होंगे। और भारतीय मूल की 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन बनी सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियन गेम्स से, जहां एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक देश के नाम किए। वहीं आज एथलीटों ने 2 स्वर्ण पदक भी जीता। नीरू ढांडा हो या फिर महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा हो, दोनों ही इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने निशानेबाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अपना पहला एशियन गेम्स खेल रहे नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल में 28 के एशियन रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाली वे भारत की पहली महिला ट्रैप निशानेबाज हैं। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: It's the Target Games champion. So we've got gold with a gold in the women's individual trap event, getting in India their fifth gold. The medalist Akir had clinched silver, but this is the moment of glory for India in the individual event. Yes, well done, Neeru, 26-year-old, born in Jind, Haryana, moved to Madhya Pradesh to.
2: Neeru ne qualification mein 118 ank ke saath shirsh sthan.

0: हासिल किया। फाइनल में उन्होंने 28 अंक के साथ एशियाई रिकॉर्ड बनाया और एशियाई खेलों के इतिहास में ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इसके अलावा नीरू एशियाई खेलों में ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में पहली भारतीय मेडलिस्ट हैं। नीरू ने फाइनल में जबरदस्त लय दिखाते हुए एक के बाद एक सटीक निशाने लगाए। उनका पहला मिस उनके 9वें शॉट में हुआ, जिससे वो थोड़ी देर के लिए तीसरे नंबर पर आ गई। लेकिन उन्होंने तीसरी और चौथी सीरीज में परफेक्ट हिट्स के साथ तेजी से वापसी की और 20 शॉट्स में 19 हिट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई। उन्होंने 5वीं सीरीज में एक शॉट मिस करने के बावजूद अपनी गोल्ड मेडल की पोजीशन बनाए रखी। फिर उन्होंने लगातार 5 सटीक निशाने लगाकर भारत को 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। शानदार गोल्ड मेडल। चीन की युनोंग सन ने 26 अंक के साथ रजत और कुवैत की खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले नीरू ने आज आशमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ ट्रैप टीम निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने 3 दिन चले 125 शॉट वाले क्वालिफिकेशन राउंड के बाद कुल 328 का स्कोर बनाते हुए ये पदक देश के नाम करवाया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो आज के दिन का पहला गोल्ड मेडल नीरू ने भारत के नाम किया और इस टूर्नामेंट में जैसे ही नीरू ने आज पदक जीता वो भारत का 5वां गोल्ड मेडल था और उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया क्योंकि वो पहली निशानेबाज बन गई है महिला ट्रैप में जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। आइए सुनते हैं स्वर्ण पदक विजेता नीरू ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा।
2: सुपर हाई लेवल पे फीलिंग है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ अपने देश के लिए गोल्ड जीता है। नेशनल एंथम अपने देश का बजना मतलब मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी थी लेकिन मैंने अपने आप को काम रखा और अपने आप पे फोकस किया, गोल्ड आया। मेडल मेरी माँ को डेडिकेट करती हूँ सर, और मेरे कोच को डेडिकेट करती हूँ, और पूरे इंडिया को डेडिकेट।
1: उधर ट्रैप निशानेबाज शपथ भारद्वाज ने 117 पॉइंट्स के साथ क्वालिफिकेशन में 8वें स्थान पर रहने के बाद पुरुषों के ट्रैप शूटिंग इंडिविजुअल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शपथ संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहे और कतर के मोहम्मद अल रुमाही और कजाकिस्तान के अलीशेर के साथ तीन तरफा शूट ऑफ में शामिल हुए। फिर उन्होंने आखिरी दो जगहों के लिए शूट ऑफ में जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल शपथ से भी पदकों की उम्मीद होगी कि देश के लिए वो स्वर्ण पदक अपने नाम करें। और अब निशानेबाजी से चलते हैं एथलेटिक्स की ओर, जहां महिला टीम ने रिले स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया है। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये एशियाई खेलों के इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: भारत की किरण पहल, पुवम्मा माचितिरा, प्राची और विथ्या रामराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बहरीन दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। इससे पहले गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, स्नेहा सत्यनारायण और हरिता भद्रा ने 4x100 मीटर मिक्स रिले फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया। इन खेलों में भारत की आखिरी एथलेटिक्स स्पर्धा में धर्मवीर चौधरी, मनु थिक्की नलिल, जय कुमार और विशाल थेन्नराजू ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फाइनल में कांस्य पदक जीता था। जापान को स्वर्ण और कतर को रजत पदक मिला था। भारत के देव कुमार मीणा पुरुषों के पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 5.50 मीटर के साथ 7वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 800 मीटर में पूजा उल्ला 7वें और पुरुष वर्ग में मोहम्मद अफजल 8वें स्थान पर रहे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो भारत ने लेन 6 से रिले की शुरुआत की और किरण को शुरुआती लेग की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्प्रिंटर किरण ने तीसरे स्थान पर बैटन को पास किया। अनुभवी पुवम्मा ने दूसरे लेग में प्राची को बैटन सौंपा, जो पहले ही 400 मीटर में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीत चुकी है। प्राची ने भारत को मेडल की दौड़ में मजबूती से बनाए रखा। इसके बाद आखिरी लैप विथ्या के नाम रहा। विथ्या ने जल्द ही अपनी लय पकड़ ली और आगे चल रहे धावकों से अंतर कम करना शुरू कर दिया। 200 मीटर के निशाना के आसपास विथ्या ने अपनी गति तेज की। विथ्या ने फाइनल लेग की शुरुआत में ही इतनी बढ़त बना ली थी कि वे इस चुनौती का सामना कर सकें। विथ्या ने दौड़ के आखिरी हिस्से में अपना संयम बनाए रखा और सबसे पहले फिनिश लाइन पार की और देश को स्वर्ण पदक दिला दिया। और श्रोता, आपको हम ये भी बता दें कि ये एशियन गेम्स 2026 में विथ्या का तीसरा पदक था। इससे पहले वे अपने अन्य इवेंट्स में रजत और कांस्य पदक जीत चुकी हैं। ठीक एक दिन पहले उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में दशकों पुराना नेशनल

0: था। विद्या के लिए रिले में मिला गोल्ड मेडल उनके शानदार 3 मेडल वाले सफर का बेहतरीन समापन था। उधर गुलवीर सिंह ने इतिहास रचते हुए पदक की हैट्रिक पूरी कर ली है। गुलवीर ने पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में आज के फाइनल में कांस्य पदक जीता। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: गुलवीर ने शानदार दौड़ लगाते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया। बहरीन के बिरहानु बालेव ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि जापान के यामागुची तोमोनोरी ने रजत पदक हासिल किया। इससे पहले गुलवीर ने इसी प्रतियोगिता के 10,000 मीटर और 1500 मीटर इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया था। इस जीत के साथ गुलवीर बीते 40 साल में एशियन गेम्स के एक ही एडिशन में 3 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले पीटी उषा ने एशियन गेम्स 1986 में 4 मेडल जीते थे। गुलवीर 5000 मीटर फाइनल की शुरुआत में आगे रहने वाले ग्रुप के साथ बने रहे और शुरुआती 2000 मीटर के बाद तीसरे स्थान पर थे। रेस के निर्णायक दौर में भी उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन टॉप 2 स्थानों के लिए चुनौती नहीं दे पाए। गुलवीर ने इससे पहले 2023 के हांगजो एशियन गेम्स में 10

0: बन गए हैं। उनसे पहले पीटी उषा ने एशियन गेम्स 1986 में 4 मेडल जीते थे। गुरवीर 5000 मीटर फाइनल की शुरुआत में आगे रहने वाले ग्रुप के साथ बने रहे और शुरुआती 2000 मीटर के बाद तीसरे स्थान पर थे। रेस के निर्णायक दौर में भी उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन टॉप 2 स्थानों के लिए चुनौती नहीं दे पाए। गुरवीर ने इससे पहले 2023 के हांगजो एशियन गेम्स में 10000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद गुरवीर ने पुरुषों की 1500 मीटर रेस में एक और सिल्वर मेडल जीता। दूसरी ओर महिलाओं की 800 मीटर फाइनल रेस में भारत की पूजा ओल्ला 7वें स्थान पर रही। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर एथलीट पूजा ने महिलाओं की हाई जंप में कांस्य पदक जीतकर 24 साल के सूखे को समाप्त कर दिया। फाइनल में पूजा ने 1.84 मीटर की छलांग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। ये एशियन गेम्स में महिलाओं की हाई जंप में भारत का पहला कांस्य पदक है। इससे पहले बॉबी एलासियस ने 2002 में सिल्वर मेडल जीता था। पूजा से पहले सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया था। कुशारे ने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ जंप के साथ पोडियम पर जगह बनाई थी। और अब बात मुक्केबाजी पर। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में फजलुद्दीन एक्रिनबोव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अंकुश ने सेमीफाइनल में एक्रिनबोव पर 4-1 से शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। नरेंद्र अपना सेमीफाइनल मुकाबला ओरलबे के 0-5 के एकमत फैसले से हार गए। इससे पहले परवीन हुड्डा ने चीन की ली शू को 5-0 से हराकर महिलाओं के 65 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में प्रवेश किया। परवीन का गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला चीनी ताइपे की चेन नियन चिन से होगा। अब बात टेनिस पर भी कर लेते हैं। सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश ने टेनिस के पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर के मैचों में शानदार जीत हासिल करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सुमित ने दूसरे दौर में 2023 एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया के से ओंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराया, जबकि सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावन पर कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से जीत दर्ज की। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। एशियन गेम्स क्रिकेट के सभी सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए हैं। वहीं आज 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश के कारण रद्द हो गए। इस वजह से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बेहतर रैंक के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर महिला क्रिकेटर श्री चढ़नी ने गेंदबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चढ़नी को एशियन गेम्स में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का रिवॉर्ड मिला है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स में आज 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने थे। क्वार्टर फाइनल में आज श्रीलंका का नेपाल से और बांग्लादेश का मलेशिया के साथ मुकाबला होना था। ये दोनों ही क्वार्टर फाइनल बारिश की वजह से बिना टॉस के रद्द कर दिए गए। तीसरे क्वार्टर फाइनल से श्रीलंका और चौथे क्वार्टर फाइनल से बांग्लादेश को सेमीफाइनल में भेजा गया है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान और हांगकांग के बीच मैच होना था और दूसरा क्वार्टर फाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना था। ये दोनों ही मैच भी बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द कर दिए गए थे। पहला सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और भारत के बीच होगा। उधर भारत की श्री चरणी ने गेंदबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद बाएं हाथ की स्पिनर अपने करियर के बेस्ट 817 पॉइंट्स तक पहुंच गई। श्री चरणी पहले ही T20 अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कास्ट।
1: और अब बात तीरंदाजी पर भी कर लेते हैं। भारतीय रिकर्व तीरंदाज नीरज चौहान ने दक्षिण कोरिया के 3 बार के ओलंपिक टीम गोल्ड मेडलिस्ट किम जे डियाक को हराकर रूसों के इंडिविजुअल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने जे डियाक पर 6-4 से जीत हासिल की। नीरज शुरुआत में 3-1 की बढ़त लेने के बाद 3-3 से बराबरी पर आ गए थे, लेकिन चौथा सेट टाई होने से मैच 4-4 से बराबर हो गया। उधर राउंड ऑफ 32 में नीरज ने फिलीपींस के गिरविन गार्सिया को 6-0 से आसानी से हराया और तीनों सेट जीत लिए हैं। और एशियन गेम्स में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात शतरंज पर। भारतीय मूल की 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन ने शतरंज में इतिहास रच दिया। बोधना ने

0: उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना तीसरा और अंतिम वुमेन ग्रैंड मास्टर नॉम खिताब जीता।
1: इंग्लैंड की महिला टीम के लिए टॉप बोर्ड पर खेलते हुए बोधना ने टीम की अगुवाई की। उन्होंने 6 गेम जीते और 11 में से 8 का स्कोर हासिल किया, जिससे इंग्लैंड महिला वर्ग में 15वें स्थान पर रहा। बोधना बोर्ड 1 पर टूर्नामेंट की 13वीं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रही। इससे पहले सबसे युवा विमेन ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड रूस की ग्रैंड मास्टर कैटरीना लैगनो के नाम पर था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में खिताब जीता था। उनके अलावा चीन की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन होयू यफान ने भी 12 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। शिवानंदन ने यूरोपियन स्कूल्स चैंपियनशिप 2022 में सभी 24 मुकाबले जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.ear@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
4: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
2: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों

0: लाभ उठाएगा।
1: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहले शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
3: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवारंटेड रेफरेंसेस।
4: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
3: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
5: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर

0: को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
3: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपये मिलता है।
1: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Defence Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defence preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
3: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea, Mediterranean, Atlantic Ocean demonstrates the country's blue water force capability. He also commended the Indian Navy for maintaining a high level of combat readiness, noting that it is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. With Priya Mondal, Netika Gupta, Akashwani News, Delhi.
2: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multi-dimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
4: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that